Rama.

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 22वीं तिथि, तदनुसार 13 सितंबर 2026 सुबह के 6:05 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: साथ मैं फरहत नाज। ब्रिक्स सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ था। सभी ब्रिक्स देशों के समर्थन से कल नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जारी किया गया। ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई और ऐसी कार्रवाइयों से बचने को कहा जिनसे हालात और बिगड़ सकते हैं। उन्होंने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़ी निंदा की और आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों से निपटने के अपने संकल्प को फिर से दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी।
1: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयोजित ब्रिक्स नेताओं के कल रात्रि भोज में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी एक लय कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। सिम्फनी में ब्रिक्स देशों के विभिन्न वाद्य यंत्रों और संगीत परंपराओं को भारत की शास्त्रीय नृत्य परंपराओं के साथ जोड़ा गया। कार्यक्रम में विभिन्न देशों की संगीत संस्कृतियों के बीच समन्वय और ब्रिक्स परिवार की विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि तथा एकजुटता की भावना को प्रदर्शित किया। सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से एक साथ मिलकर बेहतर दुनिया के निर्माण की भावना को दर्शाने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों की समृद्ध संस्कृति और विविध सभ्यताओं को भी प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानारती नाम की पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। वे पुस्तकालय का भी दौरा करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। श्री शाह लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। गृहमंत्री कल से मुंबई के 3 दिन के दौरे पर हैं। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। वहीं दिल्ली में अगले 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की उम्मीद है। एलेना रायबाकिना ने महिला अमेरिकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में कल खेले गए फाइनल में रूस की रायबाकिना ने बेलारूस की आयना सबलेंका को पराजित किया। रायबाकिना का यह पहला अमेरिकी ओपन खिताब जबकि तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमेरिका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्वाइट्स और टिम पोइट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया था। भारत के प्रज्वल देव, फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटून कॉस्मिन की जोड़ी ने एटीपी टेनिस चैलेंजर का डबल्स खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का ये दूसरा खिताब है। वियतनाम के फान थिएट में स्पोर्ट फेस्टिवल चैलेंजर में खेले गए मैच में शीर्ष वरीयता प्राप्त इस जोड़ी ने फाइनल में जापान के यामातो सुएओका और नाओकी ताजिमा की जोड़ी को 6-1, 7-6 से हराया। महिला एशिया कप क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के ठीक 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। अर्चना कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं सामूहिक स्वरों में ये देशगान।

अभी आप सुन रहे थे अनुप जलोटा और अनुराधा से ये गणेश वंदना, और लीजिए आप सुनिए हरिओम शरण से ये राम भजन।

लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौर के गाए इस भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का ही कार्यक्रम अर्चना अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:25 हुए हैं। आइए हम आपको हमारे आज की सभा के शेष कार्यक्रम बता दें। अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह 6:30 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वर होगा सुरेश वाडकर का। बोली मिश्री गीतों का कार्यक्रम होगा सुबह 6:40 पर। 6:55 पर हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार। दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह आप सुनेंगे आज सुबह 7:00। 7:05 पर कार्यक्रम होगा कृषि संकेत। 7:20 पर आप सुनेंगे रेडियो पत्रिका कार्यक्रम गागर में सागर। संकलन व निर्माण होगा सुमित दुबे का और संयोजन और प्रस्तुति होगी सुब्रता यादव की। सुबह 7:50 पर आप सुनेंगे गीतों और गजलों का कार्यक्रम संगीत सरिता।

सुबह 8:15 पर बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम होगा लोक संगीत। 8:25 पर आप सुनेंगे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम वात्सल्य बच्चों का सुनहरा भविष्य। 8:30 पर आप सुनेंगे बच्चों का मनपसंद कार्यक्रम बाल सभा। सुबह 9:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बातें जंगल से। 10:00 हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से जिले की चिट्ठी। सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे हमारा साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। दोपहर 2:00 हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से फिल्म संगीत। शाम 5:00 हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से इस घंटे की सुर्खियां। 5:02 पर हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कार्यक्रम युववाणी। 5:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम मैं सागर हूं। 5:40 पर गीतों और गजलों का कार्यक्रम होगा संगीत सरिता। आज शाम 6:00 आप सुनेंगे ग्राम सभा कार्यक्रम। 6:30 पर कार्यक्रम होगा सदाबहार गीत। 6:45 पर बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम होगा लोक रंग। एक बार फिर आप सुनेंगे 7:20 पर कार्यक्रम लोक रंग। 7:30 से हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल। और रात 9:00 से महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जारी रहेगा। तो ये थी हमारी आज की सभा में कार्यक्रम प्रसारित होने वाले की संक्षिप्त रूपरेखा।

श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ, गायक स्वर है सुरेश वाडकर का।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 6:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए।

अयोध्या नगरी के बाहर जनकपुर प्रस्थान के लिए बारात सजी खड़ी है। वातावरण में स्त्रियों के कंठ से फूटते मंगल गीत के स्वर गूंज रहे हैं। मंत्री सुमंत्र दो रथ विशेष रूप से सजाकर राजा दशरथ के समीप ले आए। नरेश ने एक रथ पर आग्रह पूर्वक कुलगुरु वशिष्ठ को बैठाया तथा शिव गुरु गौरी तथा गणेश का स्मरण कर स्वयं दूसरे रथ पर आरूढ़ हुए। गुरु की आज्ञा पाकर महाराज ने जब बारात को चलने का संकेत दिया तो देवगण मंगल पुष्पों की वर्षा करने लगे। समस्त वातावरण गाजे बाजे, घोड़े हाथियों के गर्जन तथा धरती और आकाश से झरते मंगल स्वरों की गूंज से झंकृत हो उठा। बारात ऐसी सची है जिसका वर्णन करना कठिन है। चहुओर शुभ शकुन हो रहे हैं, बाएं नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो रहे हैं तो दाहिनी ओर खेतों में कौओं का समूह मंगल का संकेत दे रहा है। लोगों को लोभिये तथा लोमड़ी के भी दर्शन हुए जो शुभ शकुन के लक्षण हैं। उधर उज्जवल धवल सिर वाली चील विशेष रूप से कल्याण का संकेत

मानस से संगीतमय पाठ, गायक स्वर था सुरेश वाडकर का। आकाशवाणी का ये सार केंद्र है। सुबह के ठीक 6:40 हुए हैं। लेकिन सुनिए भूले बिसरे गीतों का कार्यक्रम। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को फिल्म बैजू बावरा में। गीत है शकील बदायनी का और संगीत है नौशाद का।

0: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रैवर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, और आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं गीता दत्त और मन्ना डे को फिल्म देवदास में। गीत है सैर लुधियानवी का और संगीत है एसडी बर्मन का।

0: तेने कोई खबरिया
1: रो कर बावरिया
0: धीर बन

इस गीत के साथ ही भूले बिसरे गीतों का यह कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सार केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

105.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के ठीक 7 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह। सुबह सुबह कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हमारा नमस्कार। हर सुबह नई उम्मीद लेकर आए, हर सुबह नई उम्मीद लेकर आए, हर पल चेहरे पर मुस्कान सजाए, जीवन में खुशियों की बहार रहे, जीवन में खुशियों की बहार रहे, दिल हमेशा प्रसन्न और प्यार से भरा रहे। साथियों, प्रत्येक विचार का सीधा प्रभाव शरीर पर पड़ता है। चिंता और दुख शरीर को दुर्बल और अस्वस्थ बना देते हैं, जबकि प्रसन्नता और आनंदपूर्ण विचार शरीर और मन को आनंदित करके आत्मिक सुख की अनुभूति देते हैं। साथियों, आमतौर पर हम लोग अपने आनंद और प्रसन्नता को हृदय में दबाए रहते हैं। मुस्कान में सहानुभूति के शब्दों में कंजूसी क्यों? अरे भाई, आपके पास है तो बांटिए, ब्याज सहित वापस भी मिलेगा। आप किसी को प्रसन्न करते हैं और वह हंस पड़ता है तो इससे आपकी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। आनंद जितना भी बांटा जाता है उतना और भी बढ़ता है। जो लोग दुखी रहते हैं, जिनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं रहती, उन्हें चाहिए कि दुनिया भर की स्थिति का अवलोकन करें और देखें कि उस बदतर स्थिति में करोड़ों लोग हैं जो उससे सहायता पा सकते हैं, उन्हें हंसा सकते हैं। उनके पास इतनी खुशियां हैं कि वे दूसरों को भी बांट सकते हैं। और किसी ने क्या खूब कहा है, खुश रहना भी एक खूबसूरत कला है। खुश रहना भी एक खूबसूरत कला है। मुस्कुराना हर दर्द की दवा है। मुस्कुराना हर दर्द की दवा है। जो हर पल में खुशियां ढूंढ लेता है, जो हर पल में खुशियां ढूंढ लेता है, उसका जीवन सच में खुशहाल बना रहता है। उसका जीवन सच में खुशहाल बना रहता है। जी हाँ साथियों, हंसी या प्रसन्नता यदि अंदर से आती है, परंतु हंसते मुस्कुराते चेहरे से प्रेरणा तो मिलती ही है। बुझे चेहरे जहाँ रहते हैं वहाँ का वातावरण भी बोझिल हो जाता है। इसलिए जब आंतरिक प्रसन्नता हो तो उसे चेहरे पर भी प्रकट करना चाहिए। खूब हंसिए और चेहरे को हर वक्त हसमुख बनाए रखिए। प्रसन्नता के लिए सबसे आवश्यक यह है कि मन प्रसन्न हो, क्योंकि यदि मन प्रसन्न है तो हमें हर चीज में आनंद आएगा। प्रसन्न रहना सीख लें तो सारी प्रकृति हमें हंसती हुई नजर आएगी। और साथियों, अंत में इतना ही कि प्रसन्नचित व्यक्ति दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकता है। खुशियां बांटने में खुशियां और बढ़ जाती हैं। खुशियां बांटने से खुशियां और बढ़ जाती हैं। मुस्कान से जीवन की राहें खिल जाती हैं। छोटी छोटी बातों में खुशियां तलाशते रहो। हर पल को प्यार और उमंग से सजाते रहो। इसी के साथ सुबह सुबह कार्यक्रम से हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: ये सागर केंद्र है। सुबह के ठीक 7:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि संकेत। आज का विषय है फसलों में दो तरह की इल्लियों का एक साथ नियंत्रण, और विशेषज्ञ हैं अंकित रावत।
1: भाइयों को ये सलाह रहेगी, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो रकबा ज्यादा है वो सोयाबीन उड़द का ज्यादा रहता है, इनमें इल्लियों से समस्या भी आती है, क्योंकि जो आपका सोयाबीन या उड़द का जो पौधा रहता है जिस हिसाब से उसकी पत्तियां रहती है उनको अच्छा लगता है खाना, बड़े चाव से वो खाते हैं, इन फसलों में इल्लियों का प्रकोप भी ज्यादा होता है। एक मिलेगी आपको ऐसी इल्ली जो आपकी केवल फसल की पत्ती का रस चूसते रहेगी, उसको हम कहते हैं साधारण भाषाओं में रस चूसक। दूसरा कीट अपना आ गया इल्ली वाली प्रवृत्ति में, जो कीटों का नेचर रहता है, तो इल्ली कुतर के नुकसान पहुंचाती पत्तियों को, और जो रस चूसक कीट रहते हैं वो हमारी फसलों की पत्तियों का रस चूस के उनको नुकसान पहुंचाते हैं। जहां जहां पे आपको सोयाबीन उड़दा की खेती होती है, लगभग सारे क्षेत्रों में आपका जो पीला रोग एक आम रोग है, हर किसान भाई उस रोग के बारे में भली भांति जानता है, सब अपने खेतों में देखते रहते हैं, लेकिन उसका हमारे किसान भाइयों का कारण नहीं पता रहता, उन्हें का पत्ती पीली पड़ गई वो उसको उतना ध्यान नहीं देता। लेकिन वो रोग जो हमको दिखता है वो रोग होता है विषाणु से, और जो विषाणु फैलता है वो आपकी मक्खी से, सफेद मक्खी होती है चूसने वाली प्रवृत्ति वाले वो कीट रहता है। अब होता क्या है, उसने रस चूसा, जब पत्ती से रस चूसा तो जो आपका ग्रसित पौधा था जिसमें पीले रोग का अटैक हुआ है, तो उसने रस के साथ साथ रोग के विषाणु को भी चूस लिए। अब उसने रोग के विषाणु को चूसे दूसरे पौधे पे जाके बैठा, पहले तो हमारा एक पौधा ग्रसित था, देखते ही देखते वो मक्खी 10 पौधे पे जाके बैठी, तो धीरे धीरे करते करते देखते ही देखते जब हम पहले दिन देखा तो हमारा एक पौधा था, और वही अगर हम 4 दिन बाद जाके देख रहे हैं तो हमारा आधा खेत पीला, और उसी को हमने जब एक हफ्ता बाद देखा तो पूरा खेत पीला। तो जब तक हम सोचे इसका नियंत्रण करें तब तक तो हमारा पूरा खेत ही पीला हो जाता है। तो किसान भाइयों से ये अनुरोध रहता है कि आप अपने खेत का नियमित भ्रमण करें, तो घूमने के बाद आपको आपके खेत में क्या समस्या आ रही है वो दिखती रहेगी। अब जैसे मान लीजिए अपन ने बात करी ये पीला मोजक रोग होता है वो रस चूसक इल्ली से रहता है, तो इसका नियंत्रण कैसा करें, तो एक तो नियंत्रण होगा कि जो रोग ग्रसित पौधे हैं उनको आप उचकाओ, उचका के आप गाड़ दो माटी में ताकि वो वायरस वहीं के वहीं खत्म हो। लेकिन सफेद मक्खी खत्म हुई क्या, सफेद मक्खी तो वहीं की वहीं है, तो हमें सफेद मक्खी का नियंत्रण करना आवश्यक रहता है। जो आपका कीटनाशक रहते हैं, कीटनाशक की प्रवृत्ति होती है सिस्टेमिक। सिस्टेमिक का मतलब यह है कि वो पौधे के किसी भी भाग में गिरा और गिरने के बाद पूरे पौधे में फैल गया, और जैसे ही वो आपका इल्ली ने आपके फसल में आई और उसने पत्ती सक करेगी उसके पश्चात वो मर जाएगी। अगर हमारे खेत में रस चूसक आपकी मक्खी का नियंत्रण हो गया तो येलो वेन मोजेक का नियंत्रण हो गया। ये तो बात हो गई रस चूसक इल्ली की। अब इसमें आती है दवाई हम कौन सी डालें, तो रस चूसक इल्ली के लिए हम हमारे किसान भाइयों को सजेस्ट करते हैं, वैसे तो आपके दुकानों में कई दवाइयां उपलब्ध है, जैसे आप रस चूसक बोलोगे वो आपको दुकानदार कई प्रकार की दवाई दे देगा। उसके पश्चात भी अगर हम बात करें तो इमिडाक्लोरपेट आती है 17.8 SL, इसकी 60 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से हमारे किसान भाई इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो ये रस चूसक इल्ली की नियंत्रण की बात आ गई। लेकिन अब काटवे वाली इल्ली दिखने लगी आपके खेत में, किसान भाई के पास इतना पैसा नहीं रहता है, क्योंकि समस्या रहती है कैसे तैसे करके वो खेती करता, हम लोग भी जानते हैं, हम लोग फील्ड में देखते रहते हैं, तो इल्ली नियंत्रण और मक्खी नियंत्रण दोनों दवाओं को मिला के भी हम स्प्रे कर सकते हैं। जिस भी हम प्रतिष्ठान से लेंगे उससे हम पूछ लेंगे तो वो बता देगा कि कौन सी दवा अगर हम एक रस चूसक मक्खी के लिए मिला रहे हैं और आपका इल्ली के लिए मिला रहे हैं, इससे हमारी फसल पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसी दवा हम ले सकते हैं। तो इसके लिए हम थायोमेथॉक्सेम प्लस लैम्डा, ये दो अलग अलग दवाएं हैं, इनको हम मिला सकते हैं। इनकी 80 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम स्प्रे करें तो, और ऐसी भी और भी बहुत सी दवाई आती है, जब आप दुकानदारों के पास जाओगे ऐसे कई कॉम्बिनेशन मिलेंगे, जैसे कि बीटा सल्फिरॉन प्लस इमिडाक्लोपेड, इसकी 125 ml मात्रा प्रति एकड़।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि संकेत, विषय था फसलों में दो तरह की इल्लियों का एक साथ नियंत्रण, और विशेषज्ञ थे अंकित रावत। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: थोड़ी देर में होंगे।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित। एचपीवी टीकाकरण में मध्य प्रदेश ने निर्धारित लक्ष्यों का 100% कवरेज हासिल किया। प्रदेश में कल राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से हुआ मामलों का निपटारा। और महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि अब इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदलना ब्रिक्स की साझा जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ये पवित्र ग्रंथ सदियों से मानवता को निस्वार्थ सेवा, मानवीय गरिमा और एकजुटता का मार्ग दिखाता आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये पावन अवसर लोगों को इन मूल्यों को मजबूत बनाने और अधिक करुणामय तथा सौहार्दपूर्ण विश्व के निर्माण में प्रेरित करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन प्रकाश पर्व पर अपने शुभकामना संदेश में कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब की गुरबाणी हमें सत्य, प्रेम, समानता और मानव सेवा का संदेश देती है। मुख्यमंत्री ने इस पावन पर्व पर गुरु साहिब के बताए मार्ग पर चलकर मानवता के कल्याण में सहभागी बनने का संकल्प लेने का सभी से आह्वान किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज आगरमालवा में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की सितंबर माह की 40वीं किस्त का अंतरण करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश की 1,25,10,150 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए की मासिक आर्थिक सहायता सीधे अंतरित की जाएगी। सितंबर की किस्त के साथ ही योजना के प्रारंभ से अब तक महिलाओं को नियमित मासिक सहायता के रूप में अंतरित राशि 65,395 करोड़ हो जाएगी। जून 2023 से अगस्त 2026 तक लाडली बहना योजना के अंतर्गत 39 नियमित मासिक किस्तों का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री आज भोपाल में मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के 32वें स्थापना दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ भी करेंगे। आंकड़ा पार कर लिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मिजोरम ने अपने निर्धारित लक्ष्यों को 100% कवरेज हासिल कर लिया है। ये अभियान माता पिता की सहमति से 14 वर्ष की लड़कियों को मुफ्त और स्वैच्छिक एकल खुराक एचपीवी टीकाकरण प्रदान करता है। हर टीकाकरण भारत को अपनी बेटियों के लिए एक स्वस्थ और कैंसर मुक्त भविष्य के करीब लाता है। टीकाकरण के बाद होने वाले दुर्लभ प्रतिकूल असर से निपटने के लिए 24 घंटे की व्यवस्था की गई है। अब शेष पात्र लाभार्थियों तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। एचपीवी टीकाकरण की पहल फरवरी 2026 में राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत शुरू की गई है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप

0: हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। प्रदेश में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें लंबित और राजीनामा योग्य मामले आपसी सहमति से निराकरण के लिए रखे गए। भोपाल में 57 खंडपीठों का गठन किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुनीत अग्रवाल ने बताया कि लगभग 10,757 लंबित मामले नेशनल लोक अदालत में रखे गए थे।
2: वर्षीय तृतीय लोक अदालत में सभी प्रकार के राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, लेबर डिस्प्यूट और जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम के केसेस होते हैं, बैंक रिकवरी केसेस, सिविल केसेस, कंपाउंडेबल चेक बाउंस के केसेस, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के केसेस, ये सब निराकरण के लिए रखे गए। कोर्ट के अलावा जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन है, रिवेन्यू कोर्ट हो गए, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, वहाँ भी लोक अदालत का आयोजन किया गया।
1: वहीं धार जिले के लिए कुल 44 खंडपीठों का गठन किया गया था। नेशनल लोक अदालत में कुल 2,812 प्रकरणों का निराकरण कर कुल 22 करोड़ राशि रुपए के अवार्ड पारित किए गए। झाबुआ जिले में 12 खंडपीठों के माध्यम से न्यायालय के 805 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इनमें 7 करोड़ 21 लाख रुपए की अवार्ड राशि पारित की गई। वहीं प्री लिटिगेशन के 487 प्रकरणों का निराकरण कर 57 लाख रुपए की अवार्ड राशि पारित की गई। इसके अलावा श्योपुर और मंडला जिले में भी लोक अदालतों का आयोजन किया गया। सागर जिले के बंडा में जहरीली शराब मामले के फरार आरोपी शिवांजय राजपूत को रविवार तड़के पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर पुलिस ने 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम को निशाना बनाकर 3 फायर किए, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में 2 राउंड फायर किए। इस कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने घायल आरोपी को सुरक्षित रूप से गिरफ्तार कर लिया, जो घटना के बाद से ही फरार था। अब रुख करते हैं खेलों की खबर का। जूनियर एशिया महिला हॉकी कप के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। चीन के मोकी में यह मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:15 बजे से खेला जाएगा। क्वार्टर फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से शिकस्त दी थी। भारत पूल ए में 10 अंकों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। दूसरे सेमीफाइनल में मेजबान चीन का सामना जापान से होगा। इससे पहले कल भारतीय पुरुष टीम ने इसी स्पर्धा में मलेशिया को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। अनमोल इक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। वहीं महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराया था। 7 बार का चैंपियन भारत ग्रुप ए में अपने सभी मैच जीतकर शीर्ष पर रहा। वहीं श्रीलंका ने भी सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बनाई। श्रीलंका भी अपने ग्रुप में सभी 3 मैच जीतकर शीर्ष पर रहा। इससे पहले श्रीलंका ने वर्ष 2024 में यह खिताब जीता था, जबकि भारत 7 बार यह खिताब जीत चुका है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में कई स्थानों पर कल बारिश हुई। 8 सेंटीमीटर बारिश धर्मपुरी में रिकॉर्ड की गई। वहीं खंडवा जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 13.8 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें उज्जैन, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, देवास, हरदा, सागर, रायसेन, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी, बालाघाट और छतरपुर शामिल हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में कल घुटने के खराब हिस्से को बदलने वाली आधुनिक तकनीक यूनिकोंडाइलर नी रिप्लेसमेंट पर एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। डिंडौरी के ऑडिटोरियम में कल स्वामित्व अधिकार अभिलेख पंजीयन अभियान 2026 के लिए पटवारियों एवं संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। 17 सितंबर से सेवा से संकल्प अभियान की शुरुआत के अवसर पर उज्जैन में 25 लाख दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। श्योपुर और अशोकनगर में कल माटी गणेश सिद्ध गणेश अभियान के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पन्ना टाइगर रिजर्व में पर्यटक गाइडों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कल मंडला परिक्षेत्र के कर्णावती व्याख्यान केंद्र में शुरू हुआ। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व के सिझोरा परिक्षेत्र के ग्राम कटंग टोला में कल वन विभाग ने सांभर के शिकार के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अलीराजपुर जवाहर नवोदय विद्यालय में कल खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा पुलिस विभाग द्वारा युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और झाबुआ जिले में तुरिया माही अप्रोच लाबरिया मार्ग के लिए 62.99 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित। HPV टीकाकरण में मध्य प्रदेश ने निर्धारित लक्ष्यों का 100% कवरेज हासिल किया। प्रदेश में कल राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से हुआ मामलों का निपटारा। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के ठीक 7:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए रेडियो पत्रिका कार्यक्रम गागर में सागर। संकलन निर्माण है सुमित दुबे का और संयोजन और प्रस्तुति है शुभ्रता यादव की।
1: गागर में सागर। नमस्कार, गागर में सागर इस साप्ताहिक रेडियो पत्रिका के आज के संक में तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस पत्रिका के 5 सेगमेंट यानी कि 5 पड़ाव हैं, जिनके तहत बहुत कुछ समेट कर लाते हैं हम आपके लिए। तो चलिए पत्रिका की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट सागर मंथन के साथ। सागर मंथन में बीते सप्ताह की कुछ खास गतिविधियां। 6 सितंबर दिन रविवार को मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित संभागीय लता मंगेशकर सुगम संगीत प्रतियोगिता का आयोजन संगीत महाविद्यालय में संपन्न हुआ। इस मौके पर पधारे मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश सरकार में संस्कृति पर्यटन धार्मिक न्यास विभाग के राज्य मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा,
2: संभागीय लता मंगेशकर सुगम संगीत प्रतियोगिता का आयोजन जो पूरे प्रदेश में पहले संभाग स्तर पर किया जाता है और यहाँ से फिर चयनित होकर जो संगीत के साधक हैं वो प्रदेश स्तर पर पहुँचते हैं। अभी बड़ी अच्छी प्रस्तुतियाँ यहाँ के संगीत महाविद्यालय के छात्रों ने दी हैं। वास्तव में ये बात ये बताता है कि संगीत की रुचि यहाँ के विद्यार्थियों में बहुत अधिक है और यहाँ जो संगीत महाविद्यालय संचालित हो रहा है वो अच्छे तरीके से संचालित हो रहा है, तभी तो इस प्रकार की प्रतिभाएं निकल कर सामने आ रही है। ये जो कार्यक्रम है, जो संभाग स्तरीय कार्यक्रम सरकार आयोजित करती है, उसका मूल लक्ष्य यही है संगीत प्रतिभाएं उभर कर आगे आए और आने वाले समय में प्रदेश का देश का और समाज का नाम रोशन करें। इस दृष्टि से इस प्रकार की प्रतियोगिता सरकार के द्वारा निरंतर आयोजित की जाती है।
1: प्रस्तुत है प्रतियोगिता के संपादित अंश।

0: 8 सितंबर दिन मंगलवार को डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के अभिमंच सभागार में 60वें साक्षरता दिवस पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। विषय था भूमंडलीय समृद्धि के लिए लोक साक्षरता। इस मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में पधारे जल पुरुष और पर्यावरणविद डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा,
1: इसकी बहुत जरूरत है कि हम ये जो हालात बिगड़े हैं उसको अपने देशज ज्ञान से, स्थानीय ज्ञान से कैसे सीखकर बराबरी के सिद्धांत से हम कैसे प्रकृति के विभिन्न तत्वों को, पंच महाभूत प्यारे बच्चों, इन प्रकृति के पंच महाभूतों को समझकर इनके साथ हमें प्यार का व्यवहार करना होगा। और जब हम किसी के साथ प्यार का व्यवहार करते हैं तो फिर धीरे धीरे विश्वास बनता है, और जब धीरे धीरे विश्वास बनता है

0: डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए समर्थ पोर्टल फिर खोल दिया गया है। इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कंप्यूटर ऑफ साइंस विभाग के विभागाध्यक्ष और एडमिशन सेल के समन्वयक डॉक्टर अभिषेक बंसल जी।
1: डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर के एडमिशन प्रोसेस जारी हैं, जिसमें कि कुल लगभग 2500 सीटें हैं। 2500 सीटों में से अभी हमारे प्रथम और द्वितीय काउंसलिंग में लगभग 2150 सीटें फिल हो चुकी हैं। रिमेनिंग जो 350 सीटें बची हैं, उसके लिए नॉन सीओटी पोर्टल को दोबारा से ओपन किया गया है। तो जो विद्यार्थी पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे और जिन्होंने सीओटी एग्जाम नहीं दिया है, वे विद्यार्थी भी अपना रजिस्ट्रेशन विश्वविद्यालय की समर्थ पोर्टल से करा सकते हैं। एवं थर्ड काउंसलिंग की डेट विश्वविद्यालय ने 15, 16, 17 सितंबर को डिक्लेयर की है। उन डेट पर जो सीटें रिक्त रह गई हैं, उन सीट पर एडमिशन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
0: अभी सर इससे क्या फायदा होने वाला है छात्रों को?
1: ये रजिस्ट्रेशन हमने इसलिए खोला है क्योंकि हमारे पास लगभग 10,000 रजिस्ट्रेशन आए थे। उसमें हमने पहले चरण और दूसरे चरण में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को चांस दिया। अभी कुछ सीटें हमारी रिक्त रह गई हैं, जिसकी डिटेल्स हमने वेबसाइट पे उपलब्ध कराई है। जिन विभागों में सीटें ज्यादा रिक्त हैं, उन सीटों के लिए हमने नॉन सीओटी पोर्टल ओपन किया है। नॉन सीओटी पोर्टल में वे विद्यार्थी दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिन्होंने सीओटी एग्जाम नहीं दिया है। तो कई बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन चूंकि सीओटी एग्जाम नहीं देने के कारण वो एडमिशन नहीं ले पाते, तो उनके लिए एक मौका है कि वो वेबसाइट पे उपलब्ध जानकारी में विभिन्न विभागों में जो रिक्त सीटें हैं उसकी जानकारी एक बार देख सकते हैं, और उस जानकारी के आधार पर अगर उनको विश्वविद्यालय में प्रवेश चाहते हैं तो नॉन सीओटी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एवं नॉन सीओटी की काउंसलिंग 17 तारीख को प्रपोज्ड है, तो जो भी सीट वेकेंट रहेंगी उन सीट पर वो प्रवेश प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
0: शिखर की ओर, शिखर की ओर। इस सेगमेंट में आज की जानकारी राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत विशेष निशुल्क टीकाकरण अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं पशु चिकित्सालय तिली के वेटनरी सर्जन डॉक्टर ब्रजेश कुमार शर्मा जी।
2: राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, जिसको NADCP भारत के एक प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे पशुधन में फूट एंड माउथ डिसीज FMD या क्षेत्रीय भाषा में कहें तो बैखरा बोलते हैं लोकल भाषा में, और ब्रूसेलोसिस को नियंत्रित करने के लिए, उन्मूलन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें भारत सरकार का उद्देश्य है कि FMD को प्रसार को रोकने के लिए 2030 तक इसको पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए। साथ ही साथ इसमें सभी जो लक्षित प्रजातियां हैं उसमें भैंस, भेड़, बकरी, सुअर शामिल हैं। मुख्य पशु चिकित्सा की जो गतिविधियां हैं, सामूहिक टीकाकरण इसमें पिछले 4 से 5 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। सभी पात्र मवेशियों को, पशुधन को हर 6 महीने में FMD की एक टीका लगाया जाता है। प्रारंभिक तौर पर हम जो 4 महीने की उम्र के बछड़े होते हैं उनमें पहला टीका लगाते हैं, और ठीक 1 माह बाद उसका बूस्टर लगाने के बाद प्रत्येक 6 माह में इसका टीकाकरण सभी पशुओं में किया जाता है। ये टीकाकरण जितने भी संवेदनशील खुर वाले जानवर हैं, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, इनको हर 6 महीने में 100% सामूहिक टीकाकरण का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें पशुपालन की टीम घर घर जाकर प्रत्येक पशु को टीकाकरण कर रही है, अपने लक्ष्य को पूर्ण कर रही है। डिजिटल ट्रैकिंग भी इसका किया जा रहा है।

0: है लक्षित पशुओं के कान में टैग लगाना, भारत पशुधन पोर्टल पर उसको डिजिटल रूप से रिकॉर्ड दर्ज किया जाना, उसी के आधार पर ये टीकाकरण चल रहा है। नियमित सीरो निगरानी और प्रकोप की जांच चल रही है। स्थानीय जो टीकाकरण है उनकी खुराक बराबर दी जा रही है और यह अभी जो इसकी अंतिम तारीख है वह है 15 सितंबर। लेकिन यदि टीकाकरण का टारगेट किसी कारण पूर्ण नहीं हो पाया है तो शायद कुछ डेट बढ़ जाए, लेकिन सभी पशुपालक FMD का टीकाकरण में पूर्ण सहयोग करें, भारत शासन की इस विशेष योजना का लाभ लें और 2030 तक इस रोग से मुक्त होने के लिए जो एक संकल्प है उसको पूर्ण करने में आप शासन का सहयोग करें।
1: सर, कोई अभी लक्ष्य निर्धारित किया गया है फिलहाल? कोई
0: लक्ष्य 100% टीकाकरण का है, जिसमें सभी जिलों की मॉनिटरिंग हो रही है और अपने लक्ष्य को पूर्ण कर रहे हैं। कुछ एक छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, आवारा पशुओं में संभावना कम हो जाती है कि वो उतनी संख्या में अगर कोई छूट जाता है। लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए विभाग की टीम आवारा पशुओं में भी गौशालाओं में लगातार प्रयास कर रही है कि कोई पशु छूटे ना। इस लक्ष्य को 100% पाना बहुत ही आवश्यक है, तभी जाके हम 2030 तक इस बीमारी से मुक्त हो सकेंगे। मेरा विशेष निवेदन है कि शासन की जो मंशा है उसमें पशुपालक भाई भी अपना पूर्ण सहयोग करें और लगातार इसका जो 6 महीने में टीकाकरण बार बार हो रहा है उसको लगातार करवाते रहें। और इसमें मुख्य रूप से जो पशुधन में हानि होती है इस रोग के आने पर, सबसे पहले तो तेज बुखार आता है, इसके बाद मुंह में छाले होते हैं, कभी कभी खुरों में भी घाव हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं और कई बार बारिश के मौसम में पैरों में कीड़े पड़ जाते हैं। बुखार की स्थिति यह है कि 104 से 107 तक इसका टेम्परेचर रहता है। तो इसको जितनी जल्दी हम शीघ्रता से जांच करेंगे, लक्षणों का हम जैसे ही देखते हैं तो तुरंत चिकित्सालय में संपर्क करें, जिससे कि उस क्षेत्र में टीकाकरण शीघ्र हो सके और कोई भी पशु छूटे ना। खासतौर पर जो गाभिन पशुओं में संभावना देखते उनको मिलती है, तो मैं आपको यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आखिरी का जो तीसरा ट्राइमेस्टर होता है, मतलब जो पशु गाभिन है और वो 7वें-8वें महीने तक की गाभिन है, उन पशुओं में कई मायनों में एवार्सन की स्थिति बहुत ही कम देखी गई है, तो उनको हम छोड़ सकते हैं। बाकी सभी पशुओं में टीकाकरण कराना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे दुग्ध उत्पादन की क्षमता में एक लंबा नुकसान होता है। पुनः अगर ठीक होने पर भी यह अपनी पूर्ववत क्षमता में पशु लौट के नहीं आता है, तो सबसे बेहतर उपाय है टीकाकरण, जिससे पशुपालक अपने लंबे नुकसान से बच सके।
2: सागर की मूर्ति।
1: सागर की मूर्ति इस सेगमेंट में आज हमारे साथ हैं उम्दा तबला वादक आर्यन सोनी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आर्यन।
3: थैंक यू सर।
1: तो आर्यन जी, आप कब से तबला बजा रहे हैं, कितने साल हो गए?
3: सर, मैं 9th class में था, 8th-9th class में, जब से मैं तबला बजा रहा हूँ तकरीबन 15-16 साल हो चुके हैं।
1: आर्यन जी, संगीत में तो कई विधाएं हैं और उन कई विधाओं में वादन भी एक विधा है, और वादन में भी जो ताल वाद्य हैं उनमें तबला के चुनाव का कारण और उसकी तरफ आकर्षण का क्या कारण था?
3: मेरे दादाजी गुरुजी का वर्ड है कि हाथी के पांव में सभी का पांव।
1: अच्छा।
3: कि मतलब तबला को देखा जाए आज के परिप्रेक्ष्य में तो ये लोक संगीत में भी उपयोगी है, सोलो वादन इसका एक अपना एक अहम भूमिका रखता है।
1: बिल्कुल।
3: सभी विधाओं में इसकी साथ संगत जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से निभाई जा सकती है। इन सब चीजों को देखते हुए मेरा रुझान बहुत पहले से तबले में था, और बाकी वाद्य भी हैं बहुत अच्छे अच्छे, पखावज हो गई, ढोलक हो गई, मृदंग हो गई, लेकिन अधिकतर यहाँ पे चलन जो था वो तबले का था, और मैं बहुत छोटे से उस चीज से प्रेम था, तो इस कारण से हमने इस विधा को अपनाया।
1: अच्छा, ये कह सकते हैं कि वादन के क्षेत्र में यदि ताल वाद्यों की बात करें तो तबला जो है राजा है इन सब ताल वाद्यों का।
3: जी जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल,
1: आपका ये कहना है।
3: जी जी।
1: तो बकायदा आपने इसके लिए तालीम हासिल की?
3: जी जी सर, मैंने डॉक्टर विभूति मलिक जी से तालीम ली है, अभी भी चल रही है उनके अंडर में।
1: तो तालीम के अंतर्गत क्या कोई डिग्री वगैरह भी ली इसके लिए?
3: हाँ हाँ, मैं पहले डिप्लोमा किए, फिर उसके बाद गुरुजी के अंडर में ही BA करी, फिर MA करी, और अभी उन्हीं के अंडर में हम तबला सिखाने का काम भी करते और उनसे सीखते भी हैं।
1: तो आपने जैसे बताया कि आपने बीए किया, बीए में एक सब्जेक्ट के रूप में आपने,
3: हाँ हाँ हाँ, तो बीए में हमने तबला ही मेन सब्जेक्ट लिया था और अदर सब्जेक्ट्स भी थे, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया या हिस्ट्री हो गई, तो ये सब तो थे लेकिन मेन हमारा तबला ही था।
1: मतलब जो आपका कॉम्बिनेशन था उसमें तबला जी भी एक विषय था।

0: का विषय था जी बिल्कुल।
1: अच्छा अभी आप बच्चों को सिखा भी रहे हैं?
0: हाँ हाँ हाँ, आदर्श संगीत विद्यालय में गुरुजी के अंडर में ही सिखाते भी हैं और वहाँ पे हम सीखते भी हैं गुरुजी से।
1: अच्छा ये जरूरी है कि सुगम संगीत में भी तबले के माध्यम से संगत करना चाहे हम तो शास्त्रीय संगीत सीखना जरूरी है?
0: हाँ बिल्कुल, क्योंकि बोलों का एक दूसरे से जो संबंध होता है वो संबंध अगर नहीं रहता तबले में तो तबले का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तबले का अस्तित्व मतलब जो उनके बोल है, बोलों के मध्य में एक संबंध रहना चाहिए। और यदि हम बिना सीखे उस चीज को वादन करते हैं, तीन ताली को वादन करते हैं, तो अगर हमने बिना सीखे का या हमने अपने मन से या नेट में से यूट्यूब में से देख के सीखा है तो धिन का वजन, धा का वजन, क्योंकि अगर अपन ने प्रॉपर ताली ना ली हो, किसी गुरु जी के पास ना बैठे हो, तो उन बोलों का वजन आना मुश्किल है। या आप उसको क्रमबद्ध तरीके से ताल को सुचारू रूप से संचार नहीं कर सकते, चालू नहीं कर सकते। या आप चलना तो लोगे, कुछ दूरी पे जाओगे, आप किसी ना किसी जगह पे सम या मात्राओं का भूलना या उसको निभा भी गए तो उन बोलों का सही तरीके से ले जाना अंत तक ये कठिन पड़ता है।
1: वो पहला मौका कब था जब आप मंच पर गए और तबले के माध्यम से आपने संगत की?
0: लता मंगेशकर कॉम्पिटिशन होती है उसमें फर्स्ट टाइम हमने तबला पहली बार बजाया था और फिर उसके बाद धीमे धीमे करके गुरुजी लोगों ने बजवाया, वर्कशॉप में बजाया, कथक में बजाया और भोपाल साइड बहुत सारे फंक्शंस में फ्लूट वालों ने बुलाया, सभी जगहों से हमें मिला है, अपॉर्चुनिटीज मिली है। अभी जैसे ग्वालियर में प्रोग्राम हुआ था उधर पे हम बहुत सारे बच्चों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में लेके गए थे अपने अंडर में, तो सभी लोगों ने उधर पे बजाया था और संगत करी थी और बहुत सारी चीजें सुनने को और समझने को मिली थी वहाँ पे।
1: उसमें कितने तबला वादकों ने हिस्सा लिया था?
0: 3000 बच्चों ने हिस्सा लिया था और मेरे अंडर में 50 से 60 बच्चे गए थे, साथ में हम लोग गुरुजी ने हम सभी को भेजा था एक साथ में। बीए के दौरान यूथ फेस्टिवल गए थे ग्वालियर, ग्वालियर में हमारा सेकंड नंबर लगा था वहाँ पे। यहाँ पे सागर में चक्राघाट पे हम लोगों ने एक फंक्शन करवाया था जिसमें तकरीबन 40 से 45 तबला वादकों को यहाँ पे एक दिन पूरा सम्मिलित करके बजवाया था।
1: तो देखो आर्यन कितनी सारी बातें हुई और अब उत्सुकता हो रही है कि आपके एक सोलो वादन की प्रस्तुति की जाए आपके द्वारा।
0: सोलो वादन के हिसाब से सबसे पहले जो पेशकार रखा जाता है मैं उसका एक या दो आवर्तन आपको दिखाता हूँ कि छोटे छोटे फूल को आप किस तरीके से सजा सकते हैं।

0: वाह भाई वाह, और अब क्या सुनाने वाले?
1: अब गुरु जी का एक टुकड़ा जो है, दादा गुरु जी का टुकड़ा है, गुरु जी से हमें प्राप्त हुआ, वो हम सुनाते हैं आपको। और एक फरमाइश उसी के साथ में, जो कि सोलह में ऋण के बाद जो यूज होती है, उसको हम सुनाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: अरे वाह वाह वाह, जो का बजा रहे थे भैया?
1: भैया हम नगड़िया बजा रहे थे।
0: राम राम।
1: राम राम।
0: का नाम है अपनो?
1: विनय यादव।
0: तो भैया नगड़िया कब से बजा रहे?
1: करीबन 5 साल हो गई हमारे लिए।
0: तो कौन से सीखी जा नगड़िया?
1: जा हम मंडली में सीखे अपने पप्पू चाचा से, अभिषेक चाचा से।
0: अच्छा, मंडली में उठक बैठक रहे कहा है?
1: हाँ।
0: तो देख देख के?
1: हाँ, और प्रभात फेरी भी हमारे गाँव में होती है।
0: हाँ हाँ
1: हाँ, तो उससे भी सीखे।
0: तो देखो यार, लोक वाद्य जो तो कई हैं, ढोलक भी है, मृदंग भी है, जो नगड़िया भी है, बहुत से ऐसे ताल वाद्य हैं, तो उनमें नगड़िया की तरफ तुम्हारा ध्यान को नगड़िया में रुचि पैदा हुई, जो का खास बात?
1: हमारे गांव में मतलब सब कुछ बजाने वाले थे, नगड़िया बजाने वाले थे नहीं, इसलिए हमने सोचा कि हम नगड़िया सीख रहे।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो उनके साथ साथ में हमने सीख ली।
0: तो नगड़िया में काका बजा लेता आप?
1: नगड़िया में राय डोरा और बुंदेली राय में बजती ही है नगड़िया, और लोकगीत फाग सहरे और देवी गीतों में हर चीज में मतलब बजा लेते हैं।
0: तो नगड़िया बजात बजात जो और जैसे ढोलक वगैरह या दूसरे ताल वादों की तरफ ध्यान नहीं गो?
1: बजा लेते हैं, वो भी बजा लेते हैं, लेकिन नगड़िया मतलब हमने सबसे पहले सीखी थी।
0: तो मंडली में मतलब नगड़िया वादक का है मेन, तो कछु सुनाओ को नगड़िया पे, डोरा बता दे, डोरा सुना दो।
1: ठीक है।

0: वाह वाह वाह। अच्छा जा बताओ कि जैसे नगड़िया तो तुम बजा ही रहो, तो कब कोई शास्त्रीय वादन सीखने की इच्छा नहीं भाई?
1: नहीं नहीं, जो हमारे गांव में मतलब भजन संध्या और राज लोकगीत फाग जो भी होता है बस,
0: तो पारंपरिक तरीके से जो बजाते हैं।
1: हाँ, जो बजाते हैं वही बजाते हैं, और हमारे घर के काम भी है, मेरे पास भैंसे भी हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, तो उसमें भी लगे रहते हैं।
0: पढ़ते भी हो?
1: पढ़ते भी हैं।
0: कौन सी क्लास में हो?
1: 12th।
0: 12th में हो, तो पढ़ाई कर रहे हैं साथ में पशुपालन भी कर रहे?
1: पशुपालन भी हो रहा और ये भी करते रहते हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: शाम के शाम एक दो घंटा हम लोग करते ही भजन संध्या।
0: अच्छा, कहूँ मंच पे कहूँ बजा भी नहीं गए?
1: गए हैं, बहुत जगह गए हैं।
0: अच्छा अच्छा, कहाँ कहाँ गए?
1: जहाँ मतलब ये पार्टी जाती है।
0: अच्छा, मंडली जाती
1: है? मंडली जाती है, वहीं जाती है।
0: तो कछु याद हो कोई मंच?
1: मंच तो जैसे आकाशवाणी छतरपुर में रिकॉर्डिंग के लिए भी गए हैं, भोपाल भी गए हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, जबलपुर भी गए हैं।
0: तो विनय भैया जा बताओ कि आगे चल के और क्या योजना है? अब नगड़िया तो बजा ही रहे हो, पढ़ भी रहे हो संगे, तो आगे चल के क्या करने? और
1: आगे चल के हमने अभी ऑक्टोपैड भी लिया है।
0: अच्छा।
1: हाँ, भागवत कथा में बजता है, तो ढोलक तबला जो बजते हैं उनके साथ बजता है, तो झूला मंजीरा की जरूरत नहीं पड़ती फिर उसमें।
0: अच्छा, तो जा बताओ ऑक्टोपैड तुमने लो नगड़िया सीखने के बाद।
1: हाँ,
0: है ना, तो नगड़िया बजा दो भाई, ऑक्टोपैड में कैसे फायदा मिला था तुम्हें भाई? नगड़िया की जो अभ्यास है वो कहूँ काम आ जात का?
1: नहीं नहीं, जो मतलब मेरे साथ जाते थे वो ऑक्टोपैड बजाने वाली, हम नगड़िया बजाने जाती थी, तो उनके ही साथ हमने देख देख के हमने भी ले लिया था।
0: हाँ, तो मतलब एक ही बजा भी कोई फायदा मिलो कहा?
1: हाँ, फायदा मिला है, और मुझे वो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट था।
0: अच्छा, कैसे? दो चीजें स्टिक से बजती?
1: हाँ, स्टिक से बजती,
0: स्टिक रहते हुए भी है ना, मगर उन बजाय में का ध्यान रखना पड़ा ज्यादा नगड़िया से?
1: बजाय में उसमें मतलब नगड़िया तो एक ही है, उसमें 8 बॉक्स रहती है अलग अलग।
0: हाँ, अलग अलग शरद हूँ मैं।
1: हाँ,
0: अलग अलग समय अलग अलग आवाज आते हैं। तो ऑक्टोपैड कौन से सीख रहे?
1: एक दो जन मतलब हमारे कॉन्टेक्ट में है।
0: अच्छा,
1: उनसे पूछते रहते हैं और प्रयास करते रहते घर पे।
0: चलो, नगड़िया बजा के कछु और सुना दो, कोई एक ताल और सुना दो।
1: सुना दे रहे, तो हम आपको दीवारी की बजा के बता दें।
0: हाँ।

0: बहुत बहुत धन्यवाद विनय, आपको बहुत शुभकामनाएं।
1: जी जी धन्यवाद।
2: इस सप्ताह चर्चा में,
3: इस सप्ताह चर्चा में इस सेगमेंट के अंतर्गत पहले बात करते हैं 2026 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के बारे में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह इस बार दिल्ली के स्थान पर गुजरात के

0: अयोध्या में आयोजित किया जाएगा। नेशनल अवार्ड्स विनर्स की सूची पहले ही जारी की जा चुकी है, जिसमें आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए चुना गया और मलयालम सुपरस्टार ममूटी और बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन को ब्रह्मयुगम और चंदू चैंपियन में उनकी भूमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया जाएगा और अभिनेता और फिल्मकार रणदीप हुड्डा को सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 AD को संपूर्ण मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। इसके अलावा धनुष अभिनीत तमिल फिल्म कैप्टन मिलर को राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है। और अब बात करते हैं खेल के मैदान से। संयुक्त अरब अमीरात UAE के दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में महिला एशिया कप 2026 टूर्नामेंट का 10वां संस्करण 28 अगस्त से 13 सितंबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। इस बार प्रतियोगिता में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, थाईलैंड, हांगकांग और ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात जो कि मेजबान भी है और चौथी टीम इंडोनेशिया की है जो कि पहली बार एशिया कप में खेल रही है। भारत की तरफ से हरमनप्रीत कौर कप्तान और उप कप्तान स्मृति मंधाना है। पहला सेमीफाइनल 10 सितंबर 2026 को भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया। फाइनल में भारत ने अपनी जगह पक्की कर ली है और दूसरा सेमीफाइनल खेला गया श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच। फाइनल मुकाबला आज यानी 13 सितंबर को खेला जाएगा। गागर में सागर, इस साप्ताहिक रेडियो पत्रिका के आज के संक में बस इतना ही और अब दीजिए अनुमति सुमित दुबे को। नमस्कार। गागर में सागर।
1: अभी आप सुन रहे थे रेडियो पत्रिका गागर में सागर। संकलन और निर्माण था सुमित दुबे का। संयोजन और प्रस्तुति थी सुब्रता यादव की। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:50 हुए हैं। लीजिए सुनिए गीतों और गजलों का कार्यक्रम संगीत सरिता। आज इसमें आप सुनेंगे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की गाई चंद गजलें। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं ये गजल।

जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड,

0: रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से गीतों और गजनों का कार्यक्रम संगीत सरिता। और लीजिए अब सुनिए भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज में ये एक और गजल।

भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की गए इस गजल के साथ ही संगीत सरता का एक कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में DRDO का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट।

0: जारी। एलिना रायबाकीना ने आरेना सबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कल ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। घोषणा पत्र में कहा गया कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है।
1: नई दिल्ली घोषणा पत्र में पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बाद में इस हमले के तार पाकिस्तान से समर्थन और प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादियों से जुड़े पाए गए। घोषणा पत्र में आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और आतंकवादियों को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया गया। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने सदस्य देशों से आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंडों को खारिज करने का आग्रह किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभी आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की भी अपील की। ब्रिक्स टीम के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के समापन भाषण में कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
2: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्ष के लिए एक नई और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा।
2: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार करना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और वर्तमान वास्तविकताओं के लिए उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
3: I would like to say that the outcome document.
4: मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।
3: जम्मू एंड कश्मीर दैट टुक प्लेस लास्ट ईयर।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: ब्रिक्स सम्मेलन में आज ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स के 10 साझेदार देश हैं बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी वार्ता करेंगे। यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष सम्मेलन की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स नेताओं के लिए कल रात्रि भोज का आयोजन किया। इसमें विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिंफनी, एक लय, कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair

0: www.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।
4: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह केंद्र पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तटीय गांव जुनपुट में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एक बड़ी परियोजना होगा और उड़ीसा की चांदीपुर परीक्षण रेंज के अलावा आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित परीक्षण केंद्र के बाद DRDO का तीसरा प्रमुख केंद्र होगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानार्थी नाम की पांडुलिपियों की विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री पुस्तकालय का दौरा भी करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। वे लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। गृह मंत्री कल से मुंबई के 3 दिन के दौरे पर हैं। इराक ने मेसान प्रांत में सैन्य अभियान कमांडर को बर्खास्त कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शलामचे सीमा चौकी को भी एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
5: सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर ड्रोन हमलों की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि ये हमले इराक की ओर से किए गए थे, लेकिन उसने जवाबी कार्रवाई की जगह इराकी सरकार के प्रयासों को समर्थन का फैसला किया है। यमन में हौसी विद्रोहियों ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने 48 घंटे के दौरान यमन में 100 से अधिक हवाई हमले किए। इस मामले में कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत के संकेत मिले हैं। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने तनाव कम करने, शांति स्थापित करने और क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत करने के प्रयासों को समर्थन देने के महत्व पर बल दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
6: महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। वहीं पुरुष क्रिकेट में आज भारत अफगानिस्तान के साथ 3 T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। टेनिस में एलिना रैबाकिना ने महिला सिंगल्स अमरीकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में खेले गए फाइनल में कजाकिस्तान की रैबाकिना ने बेलारूस की आरेना साबालेंका को 6-4, 5-7, 6-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। रैबाकिना का ये पहला अमरीकी ओपन खिताब है और तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमरीका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्रेविट्स और टिम पुएट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज न्यूयॉर्क में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मुकाबला अमरीका के बेन शेल्टन से होगा। उधर भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटुन कोज़ेमिन की जोड़ी ने ATP टेनिस चैलेंजर का डबल्स का खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का ये दूसरा खिताब है।
0: नेपाल में बाढ़ प्रभावित 8 जिलों से और शव बरामद होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1386 हो गई है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास आई बाढ़ ने उत्तर और मध्य नेपाल के कस्बों और गांवों में भारी तबाही मचाई थी। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज वर्षा का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान निकोबार में गरज चमक के साथ वर्षा की आशंका है। दिल्ली में अगले 5 दिन तक कुछ स्थानों पर तेज वर्षा के आसार हैं। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
8: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आम सहमति से घोषणा पत्र की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, टैरिफ के नाम पर दादागिरी बंद हो, सीमा पार आतंकवाद और वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस का संदेश। नवभारत टाइम्स के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष बातचीत से खत्म हो। जनसत्ता लिखता है, मोदी और चिनफिंग में द्विपक्षीय वार्ता, सीमा मुद्दों पर दोनों पक्ष स्वीकार्य समाधान के लिए प्रतिबद्ध। दैनिक जागरण के अनुसार पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा से आतंकवाद से भारत की को बल मिला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी समर्थन। लोकसत्ता के मुताबिक डॉलर के मुकाबले ब्रिक्स देशों ने चुना स्थानीय मुद्राओं का रास्ता। साझा मुद्रा से पीछे हटकर भुगतान व्यवस्था मजबूत करने पर जोर। पंजाब केसरी की सुर्खी है, 21 ब्रिक्स देशों की जुबानी भारत लिखेगा नई कहानी। 20 साल का हुआ ब्रिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले 20 वर्ष के लिए हमें नई और महत्वाकांक्षी कार्य योजना पर काम करना होगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कहा, पाकिस्तान में है आतंकी हाफिज सईद। जम्मू की विशेष अदालत में दी जानकारी, जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर छापेमारी। कुपवाड़ा, कुलगाम, बांडीपुरा और सोपोर में कई जगह तलाशी। डोडा में जैश आतंकी का शव मिला। अमर उजाला की सुर्खी है, जिहाद के लिए युवाओं को जोड़ रहा अलकायदा का आतंकी गिरफ्तार। एटीएस ने आजमगढ़ से दबोचा, आतंकी संगठन की विचारधारा से जुड़े लोगों के ग्रुप में कोर्ट में होती थी बातें। हथियार चलाने और बम बनाने की ट्रेनिंग लेने वाला था मोहम्मद नबील। राजस्थान पत्रिका के अनुसार समंदर से बुझेगी मुंबई की प्यास, रोज 40 करोड़ लीटर मिलेगा पानी, चेन्नई के बाद दूसरा प्रमुख शहर बनेगा। संयंत्र में समुद्री पानी को आरओ तकनीक से खारा पानी मीठा होगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कम रैंक वाले कॉलेजों के ग्रेजुएट हार्वर्ड जैसा कमा रहे, अच्छी कमाई के लिए नामचीन डिग्री जरूरी नहीं। पत्र के अनुसार कॉलेज चुनने में कमाई को आधार न बनाएं। हिंदुस्तान का शीर्षक है, दिल्ली में 2.5 लाख निर्माण श्रमिकों को मिलेगा मुफ्त इलाज, निगरानी के लिए समिति गठित होगी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में DRDO का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। एलिना रायबाकीना ने आरेना सबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के ठीक 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं राजू पटेल से ये लोकगीत।
10: Also express concern over escalation of tensions in West Asia. Radha Sita ne chunariya, are Radha.

जन श्याम तही मोरी मानो। अरे हो रही है अरे हो रही है मोख दो खरिया। अरे श्याम हो रही है मोख।

0: ये सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपने बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। और लीजिए अब सुनिए देवकी नंदन सकवार से ये लोकगीत।

0: ample given boost to the country's defense testing capabilities.
1: अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन सकवाल से ये बुंदेली लोकगीत, और इसी के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ।

0: आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के 8:25 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम वात्सल्य बच्चों का सुनहरा भविष्य।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल सागर।
2: वात्सल्य बच्चों का सुनहरा भविष्य। इस प्रोग्राम का ये अंक लेकर हम हाजिर हैं अपने श्रोताओं के लिए और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक अभिभावक, बहुत जानी पहचानी एक हस्ती है सागर। चलिए फिर भी आपके लिए हम पहुंचा रहे हैं उनका परिचय उन्हीं के मुख से।
3: नमस्कार, मैं डॉक्टर रीमा गोस्वामी हूँ। मैं प्रोफेसर MHOD डिपार्टमेंट ऑफ ENT बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में हूँ। मैं यहाँ से 17 ईयर्स से यहीं पे पदस्थ हूँ
2: जी। तो मैडम, हम जानना ये चाहते हैं कि आपने अपनी बिटिया का एडमिशन

0: है, इसलिए हमने ये वाला स्कूल हमने चूज किया था।
1: अब मेरे अगला सवाल ये आता है कि आपने चुना, अपने बच्चे को पहुंचाया, तो यहाँ बच्चों का अनुभव कैसा रहा जब वो पढ़ाई में पहुंचे?
0: यहाँ पे जो है स्ट्रेंथ जो है हर क्लास का लिमिटेड है, इट्स नॉट कि बहुत ज्यादा एक बहुत ज्यादा सी ऑफ स्टूडेंट्स है, इसलिए हर स्टूडेंट को काफी अटेंशन मिलता है। टीचर्स बहुत ही ज्यादा मतलब फ्रेंडली है, अप्रोचेबल है, जो और स्कूल्स में नहीं है। वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स लेके भी टीचर के पास जा सकते हैं, सो एक रिस्पेक्ट भी मेंटेन हो जाता है टीचर्स के साथ, और प्लस वो अपने प्रॉब्लम्स, अपनी हर छोटी छोटी बातें भी टीचर्स के साथ शेयर कर पाते हैं।
1: बहुत बढ़िया मैम, कोई ऐसी चीज जो आपको लगता हो कि हाँ ये वात्सल्य में बहुत अच्छी है, बहुत खास है, ऐसा कोई अनुभव हो?
0: मेरी डॉटर जब ज्वाइन की थी वो काफी शाय थी
1: जी,
0: पर अब उसमें वो बहुत अच्छा स्पीकर है और ये डेवलपमेंट उसका वात्सल्य में हुआ है। उन्होंने ही उनको सिलेक्ट किया हर चीज में। उसने पूरे सहोदयावार में, उसने डिबेट में वो फर्स्ट आई थी।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो वो कितने साल से पढ़ रहे हैं वात्सल्य में?
0: वो नर्सरी से ही पढ़ रही है।
1: नर्सरी से पढ़ रही
0: है। उसने आप वो ट्वेल्थ में है, उसने मैथ्स लिया है, वो इंजीनियरिंग के उसमें जाना चाहती है।
1: हम चाहते हैं कि वो बहुत सफल हो जाए और हर फील्ड में अच्छा करे। आपने बताया जैसे इंजीनियरिंग और डिबेट, यानी बहुत एक कला का क्षेत्र लग रहा है और एक साइंस का क्षेत्र लग रहा है, तो आपको लगता है कि वात्सल्य में दोनों तरह की इस तरह की मिली जुली चीजें मिलती हैं? साथ में ही आपने देखा लैंग्वेज पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप ऐसा कुछ पाती हैं कि यहाँ पे काफी कुछ फर्क फर्क चीजें भी बच्चे सीख रहे हैं, ग्रूम हो रहे हैं?
0: हाँ, बच्चे जरूर ग्रूम हो रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा आपको कि एक बच्चे पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। यहाँ की जो कॉम्पिटिशन भी है वो देखते है कि सारे स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कई बार ये देखा जाता है कि एक ही स्टूडेंट पे कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है, तो यहाँ पे एकेडमिक्स के साथ उनकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो काफी अच्छा है। मेरी डॉटर तो शी इज वेरी पंक्चुअल, काफी डिसिप्लिन्ड है
1: जी।
0: और मैं तो इस स्कूल से बहुत खुश हूँ।
1: थैंक यू सो मच, आपने इतना समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आभार आपका।
0: थैंक यू।
2: बच्चों का सुनहरा भविष्य।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल सागर।
4: ब्रिक्स लीडर्स कंडेम 2025 पहलगाम टेरर अटैक इन जम्मू एंड कश्मीर।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम वात्सल्य बच्चों का सुनहरा भविष्य।

0: पानी से पे।
1: आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के ठीक 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है बच्चों का मनपसंद कार्यक्रम बाल सभा।
0: आप प्रस्तुत हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम।

0: कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दीपक मेमोरियल एकेडमी आनंद नगर रजाखेड़ी मकरोनिया सागर। बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: बच्चों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारी प्यारी सी बाल सभा में। जी हाँ, बाल सभा बच्चों, यानी एक ऐसा कार्यक्रम जहाँ हम पढ़ाई के साथ साथ कुछ सीखते भी हैं, सुनते भी हैं और अपनी प्रतिभा भी तो दिखाते हैं बच्चे। हाँ तो बच्चों, आज भी हम अपने कार्यक्रम में बहुत कुछ सीखेंगे, सुनेंगे और ज्ञान को आत्मसात भी करना है बच्चों। तो चलिए जल्दी से थोड़ा सा मुस्कुराइए। हाँ हाँ, मुस्कुराइए और अपने मन को भी गुदगुदाइए और अपनी सुनंदा दीदी के साथ बातें साझा करने के लिए अपने रेडियो सेट के पास आ जाइए बच्चों। जल्दी आइए,

0: गए बच्चों। बहुत अच्छी बात है बच्चों, आप सभी बच्चों को दीदी की ओर से बहुत बहुत प्यार और प्रारंभ होने वाले गणेशोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं कार्यक्रम के प्रथम क्रम की चर्चा। जी हाँ, बाल धमाल। लेकिन चलिए उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: दीपक मेमोरियल एकेडमी, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित। दीपक मेमोरियल एकेडमी, कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की संपूर्ण तैयारी में अग्रणी स्कूल। दीपक मेमोरियल एकेडमी, आनंद नगर, रजाखेड़ी, मकरोनिया, सागर।
0: लीजिए बच्चों, हम फिर आपके साथ हैं और एक बार फिर प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने मुस्कुराते हुए बच्चों का हार्दिक स्वागत है। अब क्या कहें बच्चों, बाल धमाल की चर्चा कर रहे हैं और आज से तो आप बच्चों का बाल धमाल घर ही नहीं बल्कि पूरे अड़ोस पड़ोस गलियों में भी सुनाई दे रहा है। और बच्चों इन दिनों तो चारों ओर त्योहारों और धार्मिक आयोजनों की छटा भी दिखाई दे रही है। कहीं गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं तो कहीं पर्युषण पर्व की और यानी व्रत उपवास और धार्मिक साधना का वातावरण चारों ओर है। बच्चों विद्यालय की खूबसूरती भी तो यही है कि अलग अलग परिवारों अलग अलग परंपराओं से आने वाले बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ खेलते हैं और एक दूसरे के त्योहारों का सम्मान भी करना सीखते हैं। तो बच्चों कल से जहां एक ओर बुद्धि विवेक और शुभता के प्रतीक माने जाने वाले गणपति जी की स्थापना होगी, वहीं पर्युषण पर्व संयम आत्म अनुशासन त्याग और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की सीख भी देता है। तो बच्चों चर्चा करने आए हैं, आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन चलिए उससे पहले अब वक्त है नन्हे मेहमानों से मुलाकात करने का, क्योंकि बहुत उत्साहित हैं, बेचैन हो रहे हैं कि अरे हमें तो अपनी दीदी से बात करना है, साथियों से मिलना है। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्रम, बाल मंच।
2: लेकर आए बच्चों का शो
3: बाल मंच।
1: दीपक मेमोरियल एकेडमी, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित। दीपक मेमोरियल एकेडमी, कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की संपूर्ण तैयारी में अग्रणी स्कूल। दीपक मेमोरियल एकेडमी, आनंद नगर, रजाखेड़ी, मकरोनिया, सागर।
0: तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं बाल मंच। आज देखिए हमारे स्टूडियो में बहुत से नन्हे मेहमान आए हुए हैं, तो क्यों ना सबसे पहले मुलाकात की जाए इस नन्ही नन्ही गुड़िया से। बताइए आपका नाम क्या है?
4: दीदी मेरा नाम हिमांशी चौक से है।
0: किस क्लास में पढ़ती हैं आप?
4: सिक्स्थ।
0: तो जरा ये तो बताइए हिमांशी, अभी ये जो वातावरण बहुत ही अच्छा दिख रहा है और चारों तरफ धूम मची हुई है, तो आपकी पढ़ाई लिखाई पर इसका क्या असर पड़ता है?
4: दीदी हम तो बहुत इंजॉय करते हैं और पढ़ते भी हैं और त्योहारों में अपनी भागीदारी भी दिखाते हैं।
0: बच्चों बहुत अच्छी बात है, जिम्मेदारियां भी निभाना चाहिए। चलिए हिमांशी जी, आज अपने साथियों के लिए आप क्या सुनाने जा रही हैं?
4: मैं एक मोटिवेशनल कविता सुनाने जा रही हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सौ बार फिसलती है। मन का विश्वास रघु में साहस बढ़ता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोता खोर लगाता है, जा जा कर वापस खाली हाथ लौट कर आता है। मिलती ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
1: दीपक मेमोरियल एकेडमी, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित। दीपक मेमोरियल एकेडमी, कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की संपूर्ण तैयारी में अग्रणी स्कूल। दीपक मेमोरियल एकेडमी, आनंद नगर, रजाखेड़ी, मकरोनिया, सागर।
0: इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, मुलाकात करते हैं एक और नन्हे मेहमान से।
5: मेरा नाम वरुण सिंह ठाकुर है।
0: किस क्लास में पढ़ते हैं आप?
5: सिक्स।
0: कैसा लग रहा है आपको स्टूडियो में आकर?
5: अच्छा लग रहा
0: है। तो आज क्या सिखाने आए हैं अपने साथियों को?
5: स्टोरी।
0: क्या शीर्षक है आपकी कहानी का?
5: चिड़िया और गेहूं का दाना। एक छोटी सी चिड़िया खेत में रहती थी। एक दिन उसे गेहूं का दाना मिला। वह बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि इस दाने को बोकर गेहूं उगाएगी। चिड़िया ने दाना मिट्टी में बो दिया और रोज उसे पानी देती रही। कुछ दिनों बाद वहाँ पौधा उगाया। समय के साथ पौधा बड़ा हुआ और उसमें गेहूं की बाली आ गई। चिड़िया ने गेहूं के दाने निकाले और कुछ दाने अपने लिए रखे तथा अगली साल बोने के लिए रखे।
0: वरुण, इस कहानी से क्या सीख मिलती है, जरा ये भी तो बताओ अपने साथियों को।
5: मेहनत और समझदारी से किया गया काम हमेशा अच्छा फल देता है।
0: बहुत ही प्यारी कहानी सुनाई आपने। चलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम मिल लेते हैं एक और साथी से।
6: दीदी, मेरा नाम पर्व पाठक है।
0: देखिए, हम पर्व भी बहुत अच्छे अच्छे अब मनाने वाले हैं और पर्व तो चल ही रहा है और आपका नाम भी पर्व है, कितनी अच्छी बात है ना। किस क्लास में पढ़ते हैं बेटा?
6: 7th।
0: आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने साथियों के लिए आज क्या लेकर आए हैं आप?
6: मोरल वैल्यू स्पीच। गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स ट्यूनिंग इन। This is a wonderful opportunity to connect with all of you today on Akashvani. My dear friends, think of a ship out in the middle of a vast, stormy ocean. What keeps it from getting completely lost or crashing into the hidden rocks? It is the compass. In the journey of our human lives, we face similar storms, confusion and difficult choices. And the compass that keeps us on the right path is our set of the moral values. What exactly are moral values? They aren't just dry rules written down in the school textbook or words meant only for speeches. Moral values are life principles like honesty, kindness, empathy, respect and responsibility. They are quiet in a voice that tells us what is right even when doing the wrong things seems much easier or more tempting. A person might achieve immense wealth, status, or high academic percentages, but without character, integrity, true success remains incomplete. As the old saying goes, when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. But when character is lost, everything is lost. Let us promise to carry this internal compass wherever we go, making our society more compassionate, harmonious, and strong. Thank you so much. Have a wonderful day ahead. Jai Hind.
0: पर्व, बहुत ही अच्छी आपने स्पीच दी। और पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर?
5: मैं भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ।
0: अरे वाह भाई, जोरदार तालियां बच्चों। बहुत अच्छी बात है। कोशिश और प्रयास बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और अगर लक्ष्य आपने बना लिया है तो आपका लक्ष्य आपको प्राप्त हो, यही शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम मिल लेते हैं एक और साथी से। तो देखिए बच्चों, समय की धारा है जो चलती जाती है, लेकिन बहुत सारे मोती हमारे बीच हैं, नन्हे मेहमान जो हैं। एक नन्ही सी कली से हम मुलाकात कर लेते हैं।
7: गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज नंदिनी कलावत, आई एम फ्रॉम क्लास 6th। स्टोरी। एक समय की बात है, एक जंगल में 12 सिंह पानी पिया था। जब ही उसने पानी की अपनी परछाई देखी तो उसने देखा कि मेरे सिंह बहुत सुंदर हैं, लेकिन उसने देखा ये बग्गी टांगे मेरी खूबसूरती कम कर रही हैं। तो उसने भगवान को कोसते हुए बोला, भगवान आपने सबको सुंदर बनाया, बस मेरी टांगों का भी कुछ इलाज कर देते। तभी उसने देखा कि कुछ शिकारी आ रहे हैं। तभी वो वहां से तेज तेज भागने लगी। उसके सींग जो थे वो टहनी में फंस गए। उसने बोला कि आज इन्हीं बग्गी टांगों की वजह से मैं इतना तेज दौड़ पाई।
0: हाँ तो नंदिनी, इस कहानी से क्या सीख मिलती है?
7: हमें कभी भी किसी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए।
0: भाई, हमने भी आपको बिल्कुल छोटा नहीं समझा और बच्चों को तो हम बिल्कुल भी छोटा नहीं समझते। बताओ तो जरा क्यों?
7: हम छोटे जरूर हैं दीदी, लेकिन हमारे विचार बहुत बड़े हैं।
0: अभी आप ही के एक साथी ने कहा कि हमें तो राष्ट्रपति बनना है ना। तो बहुत अच्छी बात है, आपके विचार बड़े हों, आपके लक्ष्य बड़े हों, इसी उम्मीद के साथ हम अपने इस कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। तो नंदिनी जी, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और मुलाकात करते हैं एक और साथी से।
7: जी दीदी।
0: तो लीजिए बच्चों, अब हमारे बीच हैं क्रिश चक्रवर्ती जी। तो क्रिश जी, आप किस क्लास में पढ़ते हैं?
8: मैं कक्षा 6th का छात्र हूँ।
0: कौन सा विषय अच्छा लगता है आपको?
8: मुझे AI विषय बहुत अच्छा लगता है।
0: और बाकी सब्जेक्ट?
8: बाकी सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छे तो नहीं, लेकिन अच्छे भी लगते हैं।
0: ये भी बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छे नहीं लेकिन लगते हैं अच्छे, क्योंकि पढ़ना तो है ही, है ना। तो बड़े होकर क्या बनने का आपका सपना है?
8: मुझे बड़े होकर UPSC क्लियर करनी है।
0: अरे वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। तो कृष आज अपने साथियों के लिए क्या लेकर आए हैं?
8: आई विल स्पीक अ मोटिवेशनल स्पीच फॉर पर्सन हु गेट लॉस्ट सो दे थिंक आई एम अ लूजर। यू विल मे वेरी अटेम्प्ट्स बट यू आर

0: fail, but you are try again, lose again, but you can't get upset. So the world is yours. Today is a history, future is a mystery. Lose your past, achieve your present. Who understand, they will be a legend. Thank you.
1: हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और अब हम भी अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
0: ठीक है जी दीदी।
1: लीजिए बच्चों, हमने कहा था ना बहुत सारे नन्हे मेहमान हमारे स्टूडियो में आज हैं, तो इन त्योहारों की धूम में इन सभी बच्चों ने भी बहुत धूम मचा रखी है और ये धूम मचाते मचाते देखिए एक और नन्हे मेहमान हमारे बीच है। आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम विष्णु राठौर है।
1: विष्णु, बड़ा ही प्यारा नाम है। आजकल ऐसे नाम बहुत कम सुनने को मिलते हैं, आपको आपका नाम अच्छा लगता है?
2: जी दीदी।
1: किस कक्षा में अध्ययन करते हैं आप?
2: 7।
1: तो जरा एक बात और बताइए कि इन दिनों जैसे त्योहारों का भी माहौल है और आपकी पढ़ाई लिखाई भी आपको करना है, तो आप अपनी पढ़ाई को किस तरह से मैनेज करते हैं?
2: दीदी, मम्मी को टाइम नहीं मिलता है, मैं खुद से ही अपनी पढ़ाई मैनेज कर लेता हूँ।
1: बच्चों, आपको अपनी पढ़ाई स्वयं करना है अपने टाइम टेबल के हिसाब से। चलिए विष्णु जी, बहुत अच्छी बातें आपने हमसे की। अब आप अपने साथियों के लिए क्या लेकर आए हैं?
2: पोयम रेनी सीजन। क्लाउड्स आर फ्लाइंग अप स्काई, द विंड इज ब्लोइंग लो, साइंग सॉफ्ट रेन ड्रॉप्स आर फेलिंग डन, पिटर पैटर ऑन द ग्राउंड, देन रेन बींग्स और पोर, ड्रिप ड्रॉप एंड इवन मोर, द थंडर क्लॉप्स बिहाइंड क्लाउड, बूम बूम बिग एंड लाउड, द रेन ड्रॉप्स विल ड्रिजल स्लो, एंड वी विल जम्प इन पुडल्स ब्लो, द क्लाउड्स विल पार्ट टू शो द सन, एंड बिग रेन स्टॉर्म इज फाइनली डन। थैंक यू।
1: विष्णु जी, आपने बातें भी अच्छी की और कविता भी बड़ी अच्छी सुनाई।
2: मैं बताऊं दीदी, ये कविता मैंने लिखी है।
1: चलिए तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। देखो तो जरा कौन आने वाला है। और
3: दीदी कौन आने वाला है?
1: अरे भाई देखिए ना, एक और दीदी आ रही है।
4: दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: थैंक यू बेटा। सभी बच्चों को हेलो।
6: हेलो माँ।
5: आप लोग कैसे हैं?
6: हम लोग
7: दीपक मेमोरियल एकेडमी, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित। दीपक मेमोरियल एकेडमी कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की संपूर्ण तैयारी में अग्रणी स्कूल दीपक मेमोरियल एकेडमी, आनंद नगर रजाखेड़ी मकरोनिया सागर।
5: देखिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ एक नन्ही सी गुड़िया आ गई है। आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका?
8: दिव्या विश्वकर्मा।
5: दिव्या जी, आज आप क्या सुनाएंगी?
8: आज मैं एक हिंदी की मोरल कविता सुनाने जा रही हूँ।
5: बिल्कुल सुनाइए।
8: सदा सत्य की राह चलो, मन में अच्छे भाव रखो, बड़ों का तुम मान करो, छोटों से सदा प्यार करो, मेहनत से तुम आगे बढ़ो, मुश्किलों से कभी ना डरो, दुखियों की तुम मदद करो, सबके संग मिलजुल कर रहो, ईर्ष्या क्रोध को दूर भगाओ, अपने जीवन को सुखी बनाओ, सच्चाई का दीप जलाओ, दुनिया में खुशियाँ फैलाओ।
5: वेरी गुड, बहुत अच्छी कविता सुनाई आपने। और इस कविता से आपको क्या सीख मिलती है बताइए?
8: हमें हमेशा सत्य, दया, प्रेम और मेहनत की राह पर चलना चाहिए।
5: कभी आपने किसी की मदद की है, किसी जानवर की या किसी पशु पक्षी की, कुछ याद आता है तो बताइए?
8: मेरी पहले एक छोटी सी पपी थी, मैं उसको पालती थी, मैं उसको खिलाती थी और वो मेरी फेवरेट पपी थी, मैं उसे बहुत चाहती थी।
5: चलिए, पपी का नाम क्या था आपकी?
8: मेरी पपी का नाम था टफी।
5: चलिए, इसी तरह के भाव आप सभी बच्चों के मन में हमेशा बने रहे, यही कामना करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बुलाते हैं हमारे अगले बच्चे को। बेटा आपका नाम क्या है?
9: दीदी मेरा नाम विधि पौराणिक है।
5: विधि, आप किस क्लास में पढ़ती हैं?
9: दीदी मैं कक्षा 7वीं की शिष्या हूँ।
5: आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है?
9: मुझे मैथ्स पसंद है।
5: आपको स्क्वायर और क्यूब्स आते होंगे फिर?
9: यस मैम।
5: बताइए 13 का स्क्वायर क्या होता है?
9: 169।
5: वेरी गुड। देखिए मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ता, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स उतनी ही अच्छे से आपको आएगी। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना?
9: जी दीदी।
5: नीति जी बताइए, आज हमारे बच्चों को आप क्या सुनाएंगी?
9: आज मैं संगत का असर सुनाने जा रही हूँ।
5: सुनाइए।
9: कहा जाता है कि जैसी हमारी संगत होती है वैसी ही हमारी पहचान बन जाती है। अच्छे दोस्तों का साथ हमें अच्छी आदतों सिखाता है और हर कदम आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अच्छी संगत ही हमें सही रास्ता दिखाती है और कामयाब बनाती है। इसलिए हमेशा ऐसे दोस्त चुनिए जो आपके जीवन में अच्छी सोच और सकारात्मक तलाएं। संगत के प्रभाव को हम जानते हैं। जैसे जब पानी दूध की संगत करता है तो दूध उसे अपने भाव बिकवा देता है, लेकिन जब पानी कीचड़ की संगत करता है तो उसका का मूल्य कीचड़ के समान हो जाता है।
5: बहुत खूबसूरत बात कही आपने। आपके दोस्त कौन है बताइए?
9: मेरे तो बहुत सारे दोस्त।
5: बेस्ट फ्रेंड कौन है?
9: मेरी बेस्ट फ्रेंड आलिमा खान है।
5: ठीक है विधि जी, बहुत अच्छी आपने एक जानकारी दी हमारे बच्चों को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा आपका नाम क्या है?
10: आर्या दुबे।
5: आपके नाम का मतलब क्या है?
10: लक्ष्मी।
5: चलिए बहुत प्यारा नाम है आपका, क्या सुनाएंगे हमारे बच्चों को?
10: मैं आपको स्वामी विवेकानंद की कहानी सुनाऊंगी।
5: सुनाइए।
10: स्वामी विवेकानंद वॉज द ग्रेट मैन ऑफ द इंडिया। He born on 12 January 1863 in Kolkata. His famous slogan was "Utho jago aur jab tak laksh na mile badhte raho." His mother name was Bhuvneshwari Devi and his father name was Vishwanath Datta. He was fond of meditation. He met with Sri Ramakrishna and became a sannyasi. And he went to Chicago in America for religious conference. He was dead in 1902. We remember him because he was the great man and a religious person.
5: थैंक यू बेटा, आपने बहुत अच्छा बताया स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। प्यारे बच्चों, स्टूडियो में एक और नन्हे मेहमान हमारे साथ उपस्थित हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। आप अपना परिचय दीजिए।
11: मेरा नाम आरोही सोनी है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ और मैं आज आप सभी के समक्ष एक शॉर्ट स्टोरी प्रस्तुत करने जा रही हूँ।
5: स्वागत है।
11: टू द वर्ल्ड इशिका वॉज अ फ्लॉलेस हाईली सक्सेसफुल प्रोफेशनल, बट इनसाइड शी वॉज फुली ड्रोनिंग इन साइलेंट एंग्जाइटी एंड साइलेंस बर्नआउट until a severe panic attack made feel her entirely broken. During her recovery, her mentor introduced her the art of kintsugi and Japanese ancient art of repairing broken pottery with liquid gold, making the object more beautiful. Her mentor reminded her, "Your cracks are not your weakness. They are the proof that you have survived." Ishika realized that it is okay not to be okay. Her journey leaves with two powerful values, self-compassion and resilience.
5: बेटा ये शॉर्ट स्टोरी आपने खुद लिखी है?
10: Yes, ma'am.
5: इशिका, आपने जब ये स्टोरी लिखी तब आपके दिमाग में क्या था, क्या सोचकर आपने स्टोरी लिखी?
10: मैंने अपने बस आसपास की चीजों को देखा और समझा कि किस तरीके से कुछ बच्चे और छात्र अपनी अपने जीवन में ये सारी तकलीफें सहते हैं और
5: इट्स ओके नॉट टू बी ओके, है ना? ये जो आपने लाइन लिखी है ये बहुत अच्छी बात है, जरूरी नहीं सब कुछ होना ही सब कुछ हो। क्या बनना चाहती हैं आप बताइए?
10: दीदी आई वांट टू बी अ डॉक्टर और मैं कार्डियोलॉजिस्ट भी बनना चाहती हूँ बड़े होकर।
5: बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाल साथियों, हमारी अगली मेहमान हमारे स्टूडियो में उपस्थित हो चुकी है, आइए इनसे आपका परिचय करवाते हैं।
12: दीदी मेरा नाम रिनिशा खरे है, आज मैं एक पोएम बोलना चाहती हूँ हेल्थ के ऊपर। हेल्थ इज अ ट्रेजर प्रीशियस एंड ब्राइट, इट कीप्स अस एक्टिव हैप्पी एंड लाइट। ईट हेल्दी फूड एंड ड्रिंक वाटर ईच डे, एक्सरसाइज स्माइल एंड हैप्पीली प्ले, स्लीप ऑन टाइम एंड कीप योरसेल्फ क्लीन, स्टे पॉजिटिव फ्रेश एंड कीन, केयर फॉर योर बॉडी हर्ट एंड माइंड एंड लीव अनहेल्दी हैबिट बिहाइंड। गुड हेल्थ गिव्स अस स्ट्रेंथ टू ग्रो, इट हेल्प्स आवर कॉन्फिडेंस ग्लो, सो लेट अस प्रॉमिस स्टार्टिंग टुडे टू चूज अ हेल्दी एंड हैप्पी वे। थैंक यू।
5: थैंक यू बेटा, आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई और इसमें जो बात कही है हेल्दी रहने की, तो आपको पता है हेल्दी फूड और अनहेल्दी फूड क्या होते हैं?
10: जी दीदी।
5: आपको खाने में क्या पसंद है?
10: दीदी घर का सिंपल खाना जो मम्मी बनाती
5: है। ठीक है, हमें ज्यादातर हरी सब्जियाँ खानी है, मौसमी फल खाने हैं और जितना भी हो सके उतना हेल्दी खाने की कोशिश करनी है। रिनिशा आप हमारे स्टूडियो में आई, बहुत अच्छी कविता सुनाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाल मित्रों, हमारे स्टूडियो में हमारे अगले मेहमान आ चुके हैं, आपका स्वागत है। आपका नाम क्या है?
13: शुभ जैन।
5: शुभ बेटा आप किस क्लास में पढ़ते हैं?
13: सिक्स्थ।
5: अच्छा, आपको किस चीज का शौक है?
13: क्रिकेट खेलने का।
5: तो मैं आपसे एक पहेली पूछती हूँ, ठीक है?
13: जी दीदी।
5: तीन पैर की चंपा रानी रोज नहाने जाती, दाल भात का स्वाद न जाने, कच्चा आटा खाती। सोचिए सोचिए, आप लोग भी सोचिए बच्चों। हाँ बताइए। मोमोज। वैसे बच्चों ने दिमाग तो बहुत अच्छा लगा।
14: पटा।
5: हाँ पटा, बिल्कुल सही जवाब है। तो इस तरह सभी बच्चों ने उस काफी हद तक सही जवाब देने की कोशिश की। बच्चों आप लोग इतने समझदार हैं, होशियार हैं, आप लोगों को देख के एक बात का विश्वास होता है कि हमारे देश का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। तो शुभ जी बताइए आज हमारे बच्चों को आप क्या सुनाएंगे?
13: कविता
5: सुनाएंगे।
13: पेड़ बचाओ, जल बचाओ, धरती को फिर हरा बनाओ, पंछी पशु सबका है संसार, इनसे ही सुंदर है संसार। हवा स्वच्छ हो, नदी निर्मल, तभी बनेगा जीवन मंगल। प्रकृति को दो थोड़ा प्यार, यही है जीवन का आधार।
5: यही है जीवन का आधार। और बच्चों, अपनी प्रकृति को हमें सजा कर संवार कर रखना है।
13: दीदी
5: चलिए शुभ जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों अब आपकी मुलाकात कराते हैं अगले मेहमान से। आपका नाम क्या है?
14: मेरा नाम अली अंसारी है।
5: आज हमारे स्टूडियो में आप क्या लेकर आए हैं?
14: कविता।
5: सुनाइए।
14: जीत पक्की है, कुछ करना है तो डटकर कर, थोड़ा दुनिया से हटकर चल, लाख कर तो सब चलते हैं, कभी इतिहास को पलटकर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, जब तक ना हासिल हो मंजिल, तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, जो लक्ष्य सामने है उसे ही अपना ठिकाना रख। जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं, जो करते रहे इंतजार उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं।
5: जो करते रहे इंतजार उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं, बिल्कुल सही कहा। हाथ पे हाथ धरे रहकर अच्छी परिस्थिति का इंतजार करने वालों के हाथ में कुछ भी नहीं आता है ना। सफल वही होते हैं जो अपने मन को अलग रखते हैं और अपने कर्म को अलग रखते हैं। अली जी ये बताइए कि आपको क्या बनना है बड़े होकर?
14: आर्मी ऑफिसर।
5: हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
14: धन्यवाद दीदी।
5: देखिए बच्चों, आ गई है हमारे पास एक नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया रानी। बताइए आपका नाम क्या है?
15: मेरा नाम आध्या यादव है। आज मैं एक इंग्लिश स्पीच सुनाने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है हेल्थ।
5: हेल्थ, बिल्कुल, हेल्थ इज वेल्थ।
15: गुड हेल्थ इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। व्हेन वी ईट गुड फूड लाइक फ्रेश फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल एंड ड्रिंक क्लीन वाटर, आवर बॉडी गेट्स स्ट्रॉन्ग एनर्जी। वी मस्ट ऑल्सो रन, प्ले एंड वॉक आउटसाइड एवरी सिंगल डे टू कीप अवर हार्ट एंड लेग्स एक्टिव। गुड स्लीप एट नाइट helps our brain rest and feel fresh in the morning. A calm mind keeps us smiling and away from sadness. Small good habit every single day makes our life bright, beautiful and full of joy. Let us all promise to take care of our body and stay happy. Thank you.
5: Very nice. अच्छी सेहत का राज है अच्छा खाना। तो अच्छा खाना खाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखिए। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके आद्या जी। बच्चों अब देखिए कार्यक्रम के अंत में हमारी एक नन्ही मेहमान हमारे स्टूडियो में आ गई हैं और अब इनसे बातचीत करते हैं। बताइए आपका नाम क्या है?
16: मेरा नाम देवांशी हैरवार है।
5: देवांशी जी आप किस क्लास में पढ़ती हैं?
16: मैं 8th में पढ़ती हूँ।
5: आज हमारे बच्चों को आप क्या सुनाएंगी?
16: आज मैं स्वास्थ्य को लेकर एक कविता सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है आलस छोड़ो सेहत से नाता जोड़ो। सुनो कान देकर भैया बहना, स्वास्थ्य ही है सबसे सुंदर गहना। सुबह सवेरे जल्दी तुम उठना, आलस को छोड़ो आगे तुम बढ़ना। थोड़ी सी कसरत थोड़ा सा योग, पास न आएंगे कभी कोई रोग। सब्जी फल और दूध तुम खाना, स्वच्छ पानी जब तुम पियोगे भरपूर, बीमारियां भागेंगी तुमसे कोसों दूर। रात को जल्दी बिस्तर पर जाना, स्क्रीन को छोड़कर गहरी नींद सो जाना। हंसती बातें जो जीवन बिताएगा वही स्वस्थ और सुखी कहलाएगा। धन्यवाद।
5: बहुत अच्छी बात कही आपने, स्वास्थ्य का जो ध्यान रखेगा वही सुखी रहेगा, है ना?
16: जी दीदी।
5: देवांशी जी बताइए कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं?
16: मैं न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ।
5: बहुत अच्छी बात कही आपने। जब आप हमारे स्टूडियो में आई तब आप बाकी बच्चों से बातचीत आप सुन रही थी, तब आपके दिल में क्या आ रहा था, क्या सोच रही थी आप?
16: दीदी तब मैं ये सोच रही थी कि मेरा कैसा जाएगा कैसा जाएगा।
5: आप क्या बोलेंगी, है ना? देखिए आज हमारे बहुत सारे बच्चे रेडियो पर आपको सुन रहे हैं, उनको कोई संदेश देना चाहेंगी आप?
16: जी दीदी मैं बस यही कहना चाहूंगी सबसे ज्यादा अपन को हेल्दी फूड खाना चाहिए। थैंक यू दीदी।
5: थैंक यू बेटा।
1: तो बच्चों आज आपकी दोनों दीदी से आपको मिलकर मजा आया ना?
17: जी।
1: हाँ और हमें भी बड़ा मजा आया, क्यों सुब्रता जी आपको भी बड़ा मजा आया होगा, है ना?
5: आज तो मजा ही आ गया, बच्चों ने तो चार चांद लगा दिए कार्यक्रम में। पर बच्चों अब हो गई है चलने की बारी।
1: हमारे स्टूडियो में आप आए, बहुत प्यारी बातें की, इसके लिए हम आप सभी बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
7: दीपक मेमोरियल एकेडमी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित। दीपक मेमोरियल एकेडमी कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की संपूर्ण तैयारी में अग्रणी स्कूल दीपक मेमोरियल एकेडमी, आनंद नगर रजाखेड़ी मकरोनिया सागर।
18: बच्चों का शो।
7: दीपक मेमोरियल एकेडमी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए

0: कल्पित दीपक मेमोरियल एकेडमी कल्चरल एक्टिविटीज स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कॉम्पिटेटिव एग्जाम की संपूर्ण तैयारी में अग्रणी स्कूल दीपक मेमोरियल एकेडमी आनंद नगर रजाखेड़ी मकरोनिया सागर।
1: लीजिए बच्चों इन्हीं नन्ही प्रस्तुतियों के साथ अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं कल के खास दिन की चर्चा। जी हाँ, पर्व तो है ही, लेकिन कल, जी हाँ बच्चों, कल है 14 सितंबर और इस दिन हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। बच्चों जिस तरह गणेश उत्सव हमें बुद्धि विवेक का संदेश देता है ना, उसी तरह हिंदी दिवस हमें अपनी भाषा के प्रति सम्मान और जुड़ाव का संदेश भी देता है। अच्छा आप सोचिए तो जरा बच्चों, आप दादी नानी से कहानियां भी तो सुनते होंगे, है ना, गीत कविताएं भी सुनते होंगे, अपने घर की बातचीत में भी हिंदी होती है, यानी बच्चों हिंदी हमारे मन की भावनाओं में रची बसी है। तो कल हिंदी दिवस पर अपनी प्यारी हिंदी के प्रति एक छोटा सा संकल्प लेना है बच्चों। क्या वो? ये ज्ञान बढ़ाएंगे, अच्छी बातें सीखेंगे, हिंदी को सम्मान देंगे और गर्व से हिंदी बोलेंगे।
0: दीपक मेमोरियल एकेडमी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित। दीपक मेमोरियल एकेडमी कल्चरल एक्टिविटीज स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कॉम्पिटेटिव एग्जाम की संपूर्ण तैयारी में अग्रणी स्कूल दीपक मेमोरियल एकेडमी आनंद नगर रजाखेड़ी मकरोनिया सागर। हम
1: अपने श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे। तो बच्चों हमने आपसे क्या बोला कि कल हिंदी दिवस है तो संकल्प जरूर लेना है, और जिस तरह से हमने गणेश उत्सव में भी हमने आपसे बोला था ना कि बुद्धि और विवेक, हाँ, तो बुद्धि और अच्छे विचारों की सीख देता है ये पर्व, तो इसे अपने जीवन में अपनाते हुए हमें अपने ये जो संकल्प आज लिए हैं उन्हें पूरे करना है, और बिल्कुल शर्म नहीं बच्चों, गर्व के साथ हिंदी बोलना है। अपनी मम्मी के साथ भी तो बोलते हैं, है ना, परिवार में भी बोलते हैं, और झूम झूम कर नाचना है, मुस्कुराना है, धूम मचाना है, क्योंकि ये जो पर्व है हमें बहुत कुछ सीख देते हैं बच्चों। तो अब देखिए बच्चों समय तो हो चला है, अब आपसे हम और बात करेंगे, हाँ फिर मिलेंगे बिल्कुल इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए बच्चों दीदी के साथ मिलकर बोलिए जय हिंद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे दीपक मेमोरियल एकेडमी आनंद नगर रजाखेड़ी मकरोनिया सागर।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि
1: अभी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे दीपक मेमोरियल एकेडमी रजाखेड़ी मकरोनिया सागर। भारत आज 80 से अधिक

0: आकाशवाणी का ये सार केंद्र है। सुबह के ठीक 9 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम बातें जंगल से।
1: रात 8 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबर।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। बातें
3: जंगल से।
2: लोमड़ी जी आज हमारे साथ हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए कुछ अपने बारे में।
4: नमस्कार, मैं लोमड़ी हूँ। कहानियों में मुझे हमेशा चालाक कहा जाता है। जैसे आपने बहुत सारी कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ सुनी होंगी, उसमें मेरा शेर के साथ संबंध है, कौए के साथ है, केचुए के साथ है। लेकिन मैं सच कहूँ तो मैं चालाक नहीं हूँ, बल्कि बहुत समझदार, सतर्क और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेने में सक्षम हूँ। और मेरी अनुकूलता बहुत अच्छी है। मैं कुत्ते परिवार की एक छोटी सी जीव हूँ। मेरी घनी और सुंदर पूंछ है जो दौड़ते समय संतुलन बनाए रखने में, ठंड से बचने में और अपने बच्चों को गर्म रखने में मदद करती है। और मेरी जो सुनने की क्षमता है, मेरे कान भी बहुत तेज होते हैं। मैं घास या मिट्टी में छिपे छोटे जीव की हल्की सी आवाज भी सुन सकती हूँ। मेरी सुनने और देखने की क्षमता भी काफी अच्छी होती है। मैं अधिकतर रात में सक्रिय रहती हूँ, इसलिए मैं दिन में कम दिखाई देती हूँ। मेरा जो आवास है, मैं जंगलों, घास के मैदानों, झाड़ियों और गांव के आसपास जो झाड़ियां गड्ढे होते हैं उसमें रहती हूँ। मैं अनावश्यक लड़ाई से बचती हूँ और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहती हूँ।

0: जी हाँ, आपने तो अच्छा परिचय दिया है और बच्चे और सभी लोग आपको खूब पहचानते हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि प्रकृति में आपकी क्या भूमिका है।
1: प्रकृति में मेरी एक कुशल कीट एवं कुतरने वाले जीवों के नियंत्रक के रूप में है। मेरा भोजन है चूहे, बिलहरिया, खरगोश के छोटे बच्चे, टिड्डे, मेंढक, छिपकलियाँ, कीड़े मकोड़े तथा गिरे हुए फल भी मैं खाती हूँ। मैं सर्वाहारी हूँ। किसानों के खेत में फसल को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाले चूहे और कीट की संख्या को मैं नियंत्रित करती हूँ। यदि हमारी संख्या कम हो जाएगी तो उससे चूहों की आबादी बढ़ सकती है, जिससे फसलों और अनाज के भंडारों को भारी नुकसान होगा। मैं फल खाकर भी उनके बीज दूर दूर फैलाती हूँ, जिससे नए पौधे और झाड़ियाँ उगने में सहायता मिलती है। इस प्रकार मैं जंगल में पुनर्जनन में भी योगदान

0: दीदी, जैसा आपने बताया कि कहानियों में आपको चालाक बताया जाता है, तो क्या सचमुच ये है?
1: नहीं, मैं चालाक नहीं हूँ। बात ये है, अक्सर धोखा देने वाली लोमड़ी के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन मेरा वास्तविक जीवन जो है वो बिल्कुल अलग है। जिसे लोग चालाकी कहते हैं, वह मेरी जीवित रहने की कला है। मेरा शरीर छोटा होता है और जंगल में मुझसे बड़े शिकारी हैं। तेंदुआ, भेड़िया, बड़े शिकारी और बड़े शिकारी पक्षी भी मौजूद हैं। इसलिए मुझे अपनी तेज इंद्रियों, सावधानी और समझदारी का उपयोग करके अपने जीवन को सुरक्षित रखना पड़ता है।
0: यहाँ बहुत जरूरी है सुरक्षित रखना, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, आप कितनी भी समझदार हैं, लेकिन फिर भी कुछ खतरे हैं क्या आपके लिए?
1: मेरे लिए आज के समय में बहुत गंभीर समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है, हमारे प्राकृतिक आवास लगातार नष्ट हो रहे हैं। जंगलों की कटाई हो रही है, झाड़ियों को साफ करना, खेती का विस्तार कर रहे हैं, सड़क निर्माण और शहरीकरण के कारण हमारे रहने के स्थान और गड्ढे समाप्त होते जा रहे हैं। दूसरी बड़ी समस्या है, खेतों में उपयोग किए जाने वाले चूहामार जहर एवं रासायनिक दवाइयाँ। इस चूहेमार को चूहे खाते हैं, जो जहर हमारे शरीर में पहुंच जाता है, जिससे कई बार हमारी मृत्यु भी हो जाती है। और जो हमारे आवास हैं, आपको पता है कि वो एक छोटे से गड्ढे हैं, उनमें कोई वेंटिलेशन नहीं है, और जो पेस्टिसाइड किसान भाई लोग डालते हैं, उससे हमारे जीवन को बहुत खतरा है।

0: माने कि प्रकृति से अगर लोमड़ियाँ गायब हो जाए, समाप्त हो जाए, तो क्या असर पड़ेगा?
1: इससे तो बहुत असर पड़ेगा। जैसे हमने आपको बताया है कि लोमड़ियाँ क्या क्या करती हैं। लोमड़ियाँ चूहों, कीटों एवं अन्न को तनने वाले जीवों की संख्या को नियंत्रित रखती हैं। यदि लोमड़ी नहीं रहेगी तो इससे इन जीवों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे फसलें नष्ट हो जाएंगी, अनाज के भंडारों को नुकसान पहुंचेगा और किसानों को बहुत भारी आर्थिक हानि होगी। और इसके साथ ही आपको मैंने बताया कि मैं खाद्य श्रृंखला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीव हूं, क्योंकि मैं छोटे जीवों को खाकर नियंत्रित करती हूं एवं स्वयं बड़े शिकारियों के भोजन का हिस्सा भी। हमारे समाप्त होने से जो बीजों के प्राकृतिक प्रसार में कमी आएगी, जिससे कई पौधे और झाड़ियों के फैलाव पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए छोटी से दिखने वाली लोमड़ी भी प्रकृति के संतुलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
2: हमका ऐसा वैसा ना समझो, हम बड़े काम की चीज। हमका ऐसा वैसा ना समझो, हम बड़े काम की चीज। बापू बड़े काम की चीज, कौन बुरा है कौन भला है। अरे कौन बुरा है कौन भला है, हमका है तमीज। हमका ऐसा वैसा न समझो, हम बड़े काम की चीज। ओ बापू बड़े काम की चीज।
0: लोमड़ी जी, आप बड़े ध्यान से कुछ सुन रही हैं, लगता है मिट्टी में छुपे हुए कुछ जीवों की आवाज सुन रही हैं, लेकिन इससे पहले कोई संदेश दीजिए ना हमारे श्रोताओं को।
1: मैं आज श्रोताओं को ये संदेश देना चाहूंगी कि मेरा ये है कि मुझे जो कहानियों में गलत धारणा बनाई गई है कि मैं आपकी दुश्मन हूँ, चालाक हूँ, बल्कि मैं दुश्मन चालाक नहीं हूँ, प्रकृति और किसानों की मित्र हूँ एवं मददगार हूँ। खेतों में अत्यधिक रासायनिक दवाओं एवं चूहामार जहर का प्रयोग कम करें, क्योंकि इनका असर केवल चूहों पर नहीं बल्कि हम जैसे कई वन्य जीवों पर पड़ता है। जंगलों, झाड़ियों और प्राकृतिक आवासों की रक्षा करें। यदि कहीं लोमड़ी दिखाई दे तो उसे नुकसान पहुंचाने की बजाय सुरक्षित दूरी रखें, और हम जैसे और वन्य जीवों को ना भोजन खिलाएं ना ही उन्हें पकड़ने की कोशिश करें। मैं आपको एक सीख देना चाहती हूँ, आप मेरे जीवन से यह सीख सकते हैं कि जीवन में केवल ताकत ही नहीं बल्कि बुद्धिमानी, धैर्य, सतर्कता और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता भी सफलता और सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक होती है। यदि हम प्रकृति के हर छोटे बड़े जीव का सम्मान करेंगे, उनका संरक्षण करेंगे, तो हमारा पर्यावरण स्वस्थ एवं संतुलन बना रहेगा।

0: बहुत खूब। अब चलते चलते हम जानना चाहेंगे कि आज लोमड़ी की भूमिका में हमारे साथ कौन रहे।
1: मेरा नाम अरविंद बारोलिया है, वन रक्षक हूँ, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में पदस्थ हूँ।
0: और अब साहिबा को अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम से। बातें
2: जंगल से।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बातें जंगल से। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। थोड़ी ही देर में विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य अकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य अकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती है जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती है सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती है मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: ट्यूशन जी ने कहे ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी। मेरे को
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का।

अंतराल के बाद आइए आपको सुनाते हैं प्रेम रतन धन पायो फिल्म का गीत, मोहम्मद इरफान, दर्शन रावल और पलक मुछाल की आवाजों में। इरशाद कामिल ने इसे लिखा है, हिमेश रेशमिया का संगीत।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा,
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये प्रोग्राम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
1: शोधा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोले रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
2: कभी इस पग में,

0: ये गाना फिल्म परदेस का था और परदेस महिमा चौधरी की पहली फिल्म थी। वो शोमैन सुभाष घई की खोज है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुभाष घई जब भी किसी अभिनेत्री को पहली बार हीरोइन बनने का अवसर देते हैं तो उसे एक नया नाम भी देते हैं और ये नाम हमेशा मुंह से शुरू होता है और महिमा के साथ भी यही हुआ। माता पिता का दिया हुआ नाम ऋतु चौधरी घर में ही रह गया और फिल्मों के लिए महिमा मंडित हुआ नया नाम महिमा। लेकिन इस बात की पूरी जानकारी स्वयं महिमा चौधरी के स्वर में।
1: क्रेडिट दे देते हैं कि सुभाष जी ने मुझे नाम दिया, ये मैंने खुद चुना था। उन्होंने जरूर कहा था कि तुम्हारा नाम दे रहा हूँ मैं प्रेस में, तो ऋतु चौधरी ही दो कि कुछ और रखना है। तब मेरे ध्यान में आया कि अरे नहीं, नाम तो बदला जा सकता है। मुझे वैसे ही ऋतु के नाम से ये हो गया था कि मेरी क्लास में ही चार चार ऋतु थी, तो एक कंफ्यूजन हो जाता था। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही कॉमन नेम है, आई डोंट बी कंफ्यूज्ड विद एनीवन। मम्मी पापा ने सोचे बगैर ही मेरा नाम ऋतु रख दिया, तो कोई अच्छा सा नाम रखते हैं। मैंने बहुत सारे नाम ढूंढे और अगले दिन जब सुभाष जी को मैंने पढ़ाया तो उन्होंने कहा कि इसमें एम से कोई नाम नहीं है, एम से नाम होना चाहिए क्योंकि एम मेरे लिए बहुत लकी है। मैंने कोई भी नाम, कोई भी फर्म जब शुरू की है, जैसे मुक्ता आर्ट्स फिल्म्स, वो सक्सेसफुल रही है। टेलीविजन पे मैंने दृष्टि शुरू की थी, वो एकदम फ्लॉप हो गई, तो एम से नाम रखो तुम। तो मेरे जो पापा हैं उनके बेस्ट फ्रेंड, उनकी बेटियों का नाम है रिधिमा महिमा। मैंने कहा महिमा कैसा है, ही सेइंग इट्स नाइस, तो फिर हमने महिमा रखा।

0: अपने देश से प्रेम करने वाली महिमा चौधरी का जन्म दार्जिलिंग में हुआ था। उनकी पढ़ाई लिखाई भी वहीं हुई। हॉस्टल में रहने से उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता शुरू से ही रही। हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ वो नेपाली भाषा भी बहुत अच्छी तरह जानती है और बोलती भी है।
1: दार्जिलिंग को एकदम याद आउँछ। अन्त जे पनि म आज हो त्यो त्यही दार्जिलिङ मा सिकेको। अन्त हाम्रो नेपाली भाइ बहिन को बाटै सिकेको। अन्त मेरो सबै म्यानरिजम्स त्यहीँबाट हो। एन्ड टु लभ अल्सो इज आई लर्न फ्रम द नेपालीज पिपल। वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं।
0: महिमा चौधरी शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, पर उनका करियर फिल्मों में बनेगा ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। खैर, शुरुआत मॉडलिंग से हुई और उन्होंने एक शीतल पेय का विज्ञापन किया। बस यहीं से वो लाइम लाइट में आई और फिल्मी दुनिया के दरवाजे उनके लिए अपने आप खुल गए। फिल्म परदेश में गंगा के रोल में उन्हें फिल्मी दुनिया में एंट्री भी मिली और फिल्म की कामयाबी से शोहरत भी मिली और बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का डेब्यू अवार्ड भी उन्हें मिला। फिल्म परदेश के बाद महिमा की बहुत दिनों तक ऐसी कोई फिल्म नहीं आई जो बॉक्स ऑफिस पर वैसी भीड़ जुटा पाती जैसी कि परदेश ने जुटाई थी। लेकिन महिमा के नाम की लगन लोगों को उनकी फिल्में देखने के लिए खींच ही लाती।

चौधरी की जितनी फिल्म्स अब तक रिलीज हुई हैं, उनमें से ज्यादातर फिल्में मल्टी स्टार कास्ट वाली हैं। फिर भी हर फिल्म में महिमा ने अपने रोल के साथ न्याय तो किया ही है, अपनी अदाकारी के तीरों से देखने वालों को घायल भी किया है।

अशोक और चंचल महिमा चौधरी स्वभाव से गंभीर हैं। बहुत से लोगों में घिरे रहना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन जब सेट पर आती हैं, तो रोल जैसा भी हो उसमें पूरी तरह से डूब जाती हैं। फिल्म ये तेरा घर ये मेरा घर एक ऐसी फिल्म थी जिसमें सरस्वती की भूमिका में उन्होंने लोगों को रुलाया भी तो बहुत हंसाया भी।

शर्मा चौधरी के संवेदनशील अभिनय से सजी एक और बहुत प्रभावशाली फिल्म थी दिल क्या करे। ये एक ऐसी पत्नी की कहानी है जो अपनी गोद ली हुई बेटी से बेहद प्रेम करती है और नहीं जानती कि उसका पति ही उस बच्चे का जन्मदाता है। लेकिन जब ये राज जाहिर होता है तो जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है।

चौधरी ने अपने करियर में तरह तरह के रोल्स अदा किए हैं। फिल्मी दुनिया में महिमा चौधरी उन चंद अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं जिन्हें अपने अभिनय को विभिन्न रंगों में रंगने का अवसर मिला। शुरुआत हुई सन 1997 में फिल्म परदेश से। इस फिल्म में उन्होंने गांव की सीधी साधी संस्कारों में बंधी लड़की गंगा का रोल किया। 1999 में फिल्म आई प्यार कोई खेल नहीं। इसमें एक ऐसी विधवा के रोल में थी वो जिसे अपने पति के भाई से ब्याह रचाना पड़ा। रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो। फिल्म धड़कन आई सन 2000 में। इसमें महिमा चौधरी शीतल वर्मा के किरदार में थी। शीतल वर्मा एक ऐसी प्रेमिका जिससे वो प्यार करती है वो किसी और लड़की के प्रेम में दीवाना है।

सजी अगर फिल्म लज्जा की बात करें तो इस फिल्म में उनके साथ स्क्रीन शेयर की माधुरी दीक्षित और मनीषा कोइराला ने। इसमें उनका रोल मैथिली का था, सशक्त अभिनेता। मैथिली के रूप में एक ऐसी लड़की जो अपने पिता की इज्जत की खातिर दहेज के लोभियों को बहुत करारा जवाब देती है और शादी के मंडप से उठकर इनकार कर देती है। और फिल्म लज्जा महिमा चौधरी की पर्सनल

बात करें अगर फिल्म बागवान की तो उसमें उनकी स्पेशल अपीयरेंस थी। सलमान खान की वो संस्कारी पत्नी बनी थी और इस रूप में उन्होंने सबका दिल जीत लिया।

महिमा चौधरी की कुछ और फिल्में हैं ओम जय जगदीश, एलओसी कारगिल, सैंडविच, गुमनाम द मिस्ट्री और मुंबई द गैंगस्टर्स। दोस्तों, फिल्म परदेस में स्क्रीन पर महिमा चौधरी ने गाना गाया था जहां पिया वहां में। ये तमन्ना उनकी पूरी हुई सन 2006 में, जब उन्होंने आर्किटेक्ट बॉबी मुखर्जी को अपना पिया माना और अपनी गृहस्थी में रम गई। एक प्यारी सी उनकी बच्ची है। श्रोताओ, ये था आज के फनकार कार्यक्रम, जो आज केंद्रित था अभिनेत्री महिमा चौधरी पर। प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर। अब दीजिए रेणु बंसल को भी इजाजत। नमस्कार। आज के फनकार।

0: आप सुनिए जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है रायसेन जिले की चिट्ठी। आलेख विनीत माहेश्वरी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। रायसेन जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की, जिसके तहत उदयपुरा विकासखंड के देवरी में आयोजित शिविर के दौरान नर्मदापुरम सांसद दर्शन सिंह चौधरी और कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने स्थानीय व्यापारियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। व्यापारियों ने देवरी को मुख्य मार्गों और ग्रामीण अंचलों से जोड़ने वाली खस्ता हाल सड़कों के निर्माण, बैंक शाखाओं के विस्तार, एटीएम में नकदी की कमी और निराश्रित गोवंश से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराया। सांसद और कलेक्टर ने अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के निर्देश देते हुए व्यापारियों से व्यापार और श्रम नियमों का पालन करने तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन में सहयोग का आह्वान किया। इस मौके पर एसपी आशुतोष गुप्ता, जिला पंचायत सीईओ कमल सोलंकी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर सुदाम खाड़े ने ओबेदुल्लागंज विकास खंड का दौरा कर विभागीय योजनाओं और स्वास्थ्य सेवाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने ओबेदुल्लागंज स्थित पशु चिकित्सालय, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र तथा ग्राम आशापुरी की दुग्ध सहकारी समिति का मुआयना कर पशु उपचार व्यवस्था, संक्रामक रोग नियंत्रण, टीका और दुग्ध संकलन की स्थिति जांची। प्रमुख सचिव ने ओपीडी और औषधि भंडार का अवलोकन करते हुए अधिकारियों को पशुपालकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने, उन्नत नस्ल संवर्धन और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पशुपालन संचालक डॉक्टर पीएस पटेल, उप संचालक डॉक्टर एसके कपूर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जिले के कई अंचलों में सोयाबीन की फसल पर सफेद मक्खी के कारण पीला मोजेक रोग और तना मक्खी के प्रकोप से पौधे पीले होकर सूखने की समस्या सामने आई है। कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा के निर्देश पर कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के संयुक्त निगरानी दलों का गठन किया गया है। इसी क्रम में उप संचालक कृषि केपी भगत, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप कुमार द्विवेदी और सहायक संचालक के ठाकुर के दल ने गैरतगंज विकासखंड के ग्राम सहजपुर, आलमपुर एवं पापड़ा के खेतों का बीते दिनों मुआयना किया। दल ने किसान चंद्रेश राजपूत, नीरज राजपूत, चैन सिंह यादव और रिजवान अहमद सहित अन्य किसानों से सीधे संवाद कर कीट व्याधि से फसलों के बचाव के लिए तकनीकी परामर्श और उपाय बताए।

0: अब बात करते हैं लोक अदालत की। जिला न्यायालय परिसर समस्त तहसील न्यायालयों में वर्ष की तीसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन कल किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं न्यायाधीश हर्षणी यादव ने जानकारी दी कि इस लोक अदालत में जिले में 9000 से अधिक लंबित और प्री लिटिगेशन प्रकरण सुनवाई के लिए रखे गए। इस दौरान चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, सिविल विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक और श्रम मामलों के साथ साथ जलकर, बिजली बिल और राजस्व विवादों का दोनों पक्षों की आपसी सहमति से निपटारा किया गया। संत रविदास मंदिर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की प्रतिमा स्थापना समारोह गर्मामय माहौल में संपन्न हुआ। समरसता संकल्प अभियान एवं रथ यात्रा के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में सांची विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी शामिल हुए। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए समरसता, सामाजिक एकता और सद्भाव का संदेश दिया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। कार्यक्रम के समापन अवसर पर विशाल समरसता भोज का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी वर्गों के लोगों ने एक साथ बैठकर सहभागिता की। बीते दिनों कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्टर ने जिले में ब्लैक स्पॉट्स के रूप में चिन्हित दुर्घटना संभावित स्थलों पर सुधारात्मक कार्य प्राथमिकता से पूरे कराने के निर्देश दिए। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों के समीप कैट आई, रेलिंग और आवश्यक संकेतक बोर्ड लगाने के साथ साथ स्कूल कॉलेजों में यातायात जागरूकता अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। बैठक में हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर योजना के लंबित प्रकरणों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने बीते दिनों स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त बैठक लेकर योजनाओं की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मातृ स्वास्थ्य एवं बच्चों का बेहतर पोषण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जमीनी स्तर पर योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक पहुंचाने के लिए अधिकारी लगातार दौरे करें और मैदानी अमले के कार्यों की निगरानी सुनिश्चित की जाए। वहीं औद्योगिक नगर मंडीदीप के शासकीय सिविल अस्पताल में वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड द्वारा सीएसआर मद से निर्मित 5 कक्षीय सर्व सुविधा युक्त ओपीडी ब्लॉक का लोकार्पण बीते दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस अवसर पर भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा, जिला पंचायत सीईओ कमल सोलंकी और वर्धमान ग्रुप के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजीव आंगरा उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री और विधायक ने नवनिर्मित ब्लॉक का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अस्पताल परिसर में पौधरोपण भी किया। रायसेन जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: रायसेन जिले की चिट्ठी का प्रसारण अभी आपने सुना। आलेख था विनीत माहेश्वरी का, वाचन किया था अभिषेक कटियार ने। ये आकाशवाणी है, कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
2: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारा फोन इन कार्यक्रम। फोन करें, गीत सुनें।

0: नमस्कार श्रोताओ, हम हाजिर हैं आपका चहेता और पसंदीदा कार्यक्रम फोन करें गीत सुने लेकर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त जय शेखर और आइए लेते हैं ये पहला कॉल।
1: हेलो सर।
0: नमस्कार, फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: जी सर।
0: अपना नाम बताएं।
1: दीपक पटेल।
0: दीपक पटेल कहां से बोल रहे हैं आप? बमहोरी टूडर। तो दीपक भाई, हमें ये बताएं कि जब भी आप वाहन चलाते हैं
1: जी सर,
0: तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं?
1: सर हाँ, और
0: बिल्कुल सही कहा आपने, वाहन चलाते समय हमें यातायात के सारे नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि हम सुरक्षित रहेंगे तो सामने वाला भी सुरक्षित रहेगा। और दीपक क्या करते हैं आप?
1: सर खेती करते।
0: चलिए बहुत ही अच्छी बात है, बताएं दीपक गाना कौन सा सुनना चाहे आपने?
1: सर किशोर कुमार।
0: किशोर कुमार का कौन सा?
1: सर पल पल पल वाला।
0: चलिए दीपक जी सुनते हैं आपकी फरमाइश पर फिल्म ब्लैकमेल का ये गीत।

0: पांच महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने,
1: समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
2: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
1: क्या कैसे?
2: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
1: वाह। अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
2: mmsky.mp.gov.in पर। mmsky, सीखो भी कमाओ भी।
3: हेलो।
4: हाँ सर जी, मेरा प्यार भरा सत्यम नमस्कार।
3: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
4: मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमित्रा छत्तीसगढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा बोल रहा हूँ सर जी।
3: नारायण जी, क्या काम करते हैं आप?
4: मेरा खेती किसानी का काम है सर जी। अभी हम लोग इधर खेतों में धान डाले हुए हैं।
3: बहुत ही बढ़िया है।
4: हमारे यहाँ तो बारिश अच्छी है सर जी, जितना होना चाहिए फसलों के लिए उतना पर्याप्त है सर जी।
3: नारायण भाई, हमें ये बताएं कि जब भी हम यातायात के पालन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं और वो थोड़ी सी लापरवाही हमारी जान पे बनाती है।
4: जी सर।
3: तो आप बताएं कि यातायात के नियमों के पालन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है?
4: सर जी, यातायातों के जैसे हम लोग कहीं सफर में निकले हुए हैं, हमारे साथ फैमिली है या अकेले है, तो जी जितने भी इसका नियम है उसका पालन हमें करना बहुत जरूरी है। जैसे हम दो पहिए में है तो हेलमेट जरूरी है हमारे लिए।
3: हाँ।
4: और जैसे मुड़ना होता है तो उसमें जो इंडिकेटर लगा हुआ है उसका पालन करना चाहिए। और साथ में मोबाइल रखे तो सर जी, चलते हुए तो मोबाइल कभी मोबाइल से बात नहीं करना चाहिए।
3: बिल्कुल सही कहा आपने।
4: हाँ सर जी, आजकल बहुत हो रहा है सर जी, हमारे गांव में देहातों में भी ऐसी दुर्घटना हो रही है सर जी। आए दिन रोज न्यूज में सुनने को मिल रहा है, यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया।
3: हाँ।
4: यहाँ इतने खत्म हो गए।
3: बहुत ही ज्यादा दुख होता है ऐसी बातें सुन के, क्योंकि हमारी थोड़ी सी गलती जान पे बनाती है।
4: जी सर, जी सर।
3: तो नारायण भाई, हम उम्मीद करेंगे कि आप यातायात के नियमों का पालन करेंगे ही, साथ ही दूसरे लोगों को भी प्रेरित करेंगे।
4: जी सर, जी।
3: बताएं गाना कौन सा सुनना चाहे आपने?
4: फिल्म है सर जी कालिया का, सुना दीजिए सर जी, तुम साथ हो जब अपने।
3: बहुत ही अच्छा लगा नारायण भाई आपसे बातचीत करके। सुनिए अपनी फरमाइश पर फिल्म कालिया का ये गीत।

0: नमस्ते, फोन करें जी सुने में स्वागत करते हैं आपका, अपना नाम बताएं।
1: सर मेरा नाम अंशुल कोश्ती है, सागर से सुविधा द्वारा।
0: क्या करते हैं अंशुल भाई आप?
1: सिलाई का काम करते हैं सर।
0: बहुत ही बढ़िया है, किस चीज को सिलने में माहिर हैं आप?
1: सर पेंट।
0: बहुत ही बढ़िया, अच्छा काम है, अपना खुद का व्यापार कर रहे हैं, खुद का बिजनेस है और अपने हिसाब से जीते हैं आप। अच्छा अंशुल भाई, हमें ये बताएं कि यातायात के नियमों का पालन करने के लिए हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए?
1: नियम से चलना चाहिए सर, गाड़ी ध्यान से चलाए, हाँ से चले, सर अपनी साइड से चले।
0: बिल्कुल सही कहा आपने,
1: ओवरटेक करें तो ध्यान से करें।
0: हाँ, सामने से कोई वाहन आ रहा है तो ओवरटेक बिल्कुल ना करें, और जब देख लें कि दूर दूर तक कोई वाहन नहीं है तभी ओवरटेक करें।
1: सर अपनी स्पीड में चले और सर जो लिमिट है जा रहे उसी हिसाब से चले।
0: हम उनको सुनवाते हैं आकाशवाणी परिवार की ओर से ये गीत।

जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही

18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई

0: तो प्रेमलाल जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो व्यक्ति गाड़ी पर चलते हैं उन्हें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर मोटरसाइकिल या स्कूटर पर है तो हेलमेट लगाकर चलें, मोबाइल पर बात बिल्कुल भी ना करें। अगर आप चाहे कार चला रहे हो या स्कूटर चला रहे हो, हमेशा सुरक्षित चलें, अपने लेन में चलें, कभी भी यहां से वहां लहरा के ना चलें। अगर ऐसी बातों का हम नियमों का पालन करते हैं तो कई दुर्घटनाओं से हम बच जाते हैं।
1: जी सर,
0: बताए गाना कौन सा सुन रहे हैं हम आपको?
1: फिल्म को दुआरे पे माँ झगड़ा।
0: चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

0: नमस्कार सर।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका। फोन करेंगे सुने में,
0: पहली बार फोन लगे सर आपके केंद्र में।
1: ओ, बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बड़ी खुशी हो रही है हमें आपसे बातचीत करके। नाम बताइए।
0: मैं सुरेश कुमार सारथी बोल रहा हूँ सर, छत्तीसगढ़ बेमेतरा जिला से।
1: सुरेश कुमार सारथी
0: जी सर,
1: कुछ अपने बारे में बताएं, क्या करते हैं आप छत्तीसगढ़ में?
0: जी सर, मैं जैसा मेरा नाम सारथी है वैसे मेरा काम भी सारथी का है सर। मैं ड्राइवर हूँ, वाहन चलाता हूँ सर।
1: बहुत ही अच्छी बात है।
0: 30 सालों से वाहन चला रहा हूँ और पर्यटकों को सब एक स्थान से दूसरे स्थान सब ले जाते रहता हूँ सर।
1: क्या क्या घूमने के लिए है आपके यहाँ?
0: हमारे जगदलपुर क्षेत्र में बस्तर एरिया है सर, घूमने के लिए घोड़म्बे है और बहुत सारे जगह है सर जहाँ से लोग मनोरंजन के लिए और खुशहाली खुश हो उतने के लिए सब इधर आते हैं सर।
1: चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। किस मौसम में घूमना चाहिए छत्तीसगढ़?
0: छत्तीसगढ़ में सर बरसात के मौसम और ठंड के मौसम में घूमना चाहिए सर। यहाँ अच्छे अच्छे झरने भी हैं सर।
1: सुरेश भाई, आप तो चूंकि सारथी हैं
0: जी सर,
1: वाहन चलाते हैं, तो आप हमें ये बताएं कि जितनी दुर्घटनाएं आपने देखी हैं तो उसमें गलती क्या होती है दुर्घटनाओं के पीछे?
0: गलती सर इसमें लापरवाही होता है सर, सबसे ज्यादा लापरवाही और तेज रफ्तार।
1: अच्छा अच्छा
0: जी सर, तो और यातायात नियमों का पालन नहीं करना, उसको उल्लंघन कर रेड लाइट जब सिग्नल जल रहा है तो उसमें भी लोग गाड़ी को निकाल देते हैं।
1: हाँ हाँ।
0: उसका पालन नहीं करते।
1: सही कहा आपने,
0: इससे दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है सर। और खासकर बरसात की इस मौसम में वाहन चलाते समय वाहन की गतिमान की धीमी गति से चलाना चाहिए क्योंकि सड़क फिसलन होता है सर।
1: बिल्कुल सही बात है,
0: अचानक से ब्रेक मारने पर दुर्घटना हो सकती है, गाड़ी पलट भी सकती है और उसमें बैठने वाली सवारी को भी चोट भी आ सकती है। जी सर, उसके यथावत मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं सर और भगवान न करे ऐसी स्थिति किसी के ऊपर ना आए। हम यही कामना करते हैं सर। हम 30 साल से गाड़ी चला रहे हैं, पूरा भारत भ्रमण कर चुके हैं सर।
1: अच्छा अच्छा, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो बताएं गाना कौन सा सुनना चाहे आपने?
0: जी सर, आज गाना सुना दीजिए सर, जैकी श्रॉफ और जूही चावला पर फिल्माया गया फिल्म आईना है सर। चार्ली मुखर्जी और लता मंगेशकर की आवाज में। अरे गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा, सजना में मेरा दिल चुरा के ले जा।